0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर आज रवाना होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियायोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत

0: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रखे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 547 हो गई है। 1545 लोग अभी भी लापता हैं। दक्षिणी पश्चिमी चीन में 5.1 तीव्रता के भूकंप के बाद फिर से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल की बाढ़ के बाद अब तक 84 भारतीय नागरिकों को बचा लिया गया है। इनमें त्रिशूली वन परियोजना के 63 कर्मचारी और तमिलनाडु के 21 लोग शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीयों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो सका है। मंत्रालय ने बताया कि 149 लोग चीन से नेपाल पहुंचे हैं। चीन में लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। भारतीय दूतावास इन लोगों के संपर्क में है और उन्हें वहां से निकालने के लिए काम कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मछली पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन आज तमिलनाडु के ईरोड में कोंगु विल्लालर इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रस्ट के स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु जाएंगे, जहां वो राज्य विधानसभा में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे। सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी के मूल्यों में लगभग 20% की गिरावट आई है और खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के 84 विषयों के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने इस वर्ष जून में हुई अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने की घोषणा की है। पुनर्परीक्षाएं 9 और 10 सितंबर को होंगी। इसके लिए परीक्षार्थियों को अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 137वां संस्करण होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी किया जाएगा। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाकों, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वाश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकाश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फारकाश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today. On the first leg of his 2-day visit, he will reach Uzbekistan today. He will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. This will be Mr. Modi's 4th visit to Uzbekistan. The Prime Minister's office in a statement said that during his visit, he will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan. Our correspondent has the details.
2: During the visit, both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. India is among top 10 trade partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion, which is the result of the manifold increase of the trade in last few years. Medical, mining and defense are few of the important sectors in which there is a lot of potential for cooperation. India has long-standing and wide-ranging cooperation with Uzbekistan.

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: सुबह की शुरुआत आपके साथ, सुन रहे हैं सुहानी सुबह, सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।

ये जो बंसी की धुन सुनाई देती है, ये हो सकता है कि हमारी अंदर की ही आवाज़ हो, हमारी अंतरात्मा ही हमसे कुछ कहना चाह रही हो, क्योंकि ईश्वर को आप कहीं भी ढूंढने जाएं, वो आपको आपके अंदर ही मिलेंगे। जो शक्ति हमारे अंदर मौजूद है, जो एहसास सच और गलत का, जो एक बोध हमारे अंदर मौजूद है, वो हमेशा हमें आवाज़ लगाता है, और उस आवाज़ को सही समय पर ठीक से सुन लेना, ये ही जीवन जीने की कला है। और अगर ऐसा करना हम सीख जाएं, अपने अंदर की जो बंसी है उसको समझ लें, उसकी जो धुन है उसके अनुसार खुद को ढाल लें, तो जिंदगी आसान हो जाती है। इसीलिए बेहद ज़रूरी है ये जो बंसी है, ये क्या कह रही है, कौन सी धुन सुना रही है, क्या गा रही है, इसको सुनकर उसके हिसाब से ही अपने आने वाले जितने भी काम हैं उनको उसके अनुरूप ही ढाल लेना, और फिर अंदर की अंतरात्मा की ये जो बंसी की आवाज़ है, ये आपको कभी भी भटकने नहीं देगी, सही तरफ, सही दिशा की ओर ज़रूर ले जाएगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सबका सुहानी सुबह कार्यक्रम लेकर। चैनिका हाजिर है ओनली ऑन FM गोल्ड कोलकाता। घड़ी इस वक्त बता रही है कि सुबह के 7:06:45 हुए हैं, और ये जो एक घंटा हम रोजाना सुबह आपके साथ बिताते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको बहुत खूबसूरत कुछ गीत सुनवाएं और आपको बताएं कि देश और दुनिया में क्या हो रहा है। आज के दिन की खासियत रहती है और रहता है एक बेहद इंटरेस्टिंग सा कोई फैक्ट, और साथ ही हम बताते हैं किसी ऐसे एक व्यक्तित्व के बारे में जो मना रहे हैं आज अपना जन्मदिन।

कार्यक्रम में केवल बातें नहीं बल्कि खूबसूरत पुराने हिंदी फिल्मी गीतों का साथ ज्यादा है, इसलिए एक और गीत की तरफ रुख करते हैं, उसके बाद मैं लौटूंगी आपके साथ लेकर मेरी छुटपुट बातें। आपका जो दिन है आज का ये मंगलमय हो, खूबसूरत हो, सुहाना बीते, इसी उम्मीद के साथ चलिए आगे लेकर चलते हैं कार्यक्रम को।

0: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह, सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
1: सुन रहे हैं आप चैनिका के साथ सुहानी सुबह। और चलिए जान लेते हैं कि आज का ये दिन क्यों खास है, क्या कुछ घटा। अगर हम मुड़कर देखें इतिहास की तरफ तो क्या देख पाते हैं। आज है 29 अगस्त और आज ही के दिन क्या कुछ हुआ था देश और दुनिया में। सन 1612 में भारत के औपनिवेशिक युग की एक अहम घटना हुई थी। आज ही के दिन सूरत की लड़ाई में अंग्रेजों के हाथ पुर्तगालियों को हार का सामना करना पड़ा। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, क्योंकि धीरे धीरे फिर जो सिनारियो है, हमारा देश किस तरफ जाएगा, किसके अधीन आ जाएगा, किसका शासन होगा, ये बातें धीरे धीरे साफ होने लगी थी इसके बाद। और आगे की अगर मैं बात करूं तो 1842 में ग्रेट ब्रिटेन और चीन के बीच नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर के साथ ही पहला अफीम युद्ध समाप्त हुआ था आज ही के दिन। 1887 में कवि गांधी जी के डॉक्टर रहे और गुजरात के पहले मुख्यमंत्री जीवराज मेहता का जन्म हुआ था आज ही के दिन। 1932 में नेदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध विरोधी समिति का गठन हुआ था, वो भी आज ही के दिन। 1949 यानी 1949 में आज ही के दिन भारत के शीर्ष वैज्ञानिकों में से एक ए.के. राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। विस्तार से इनके आप बारे में आज हम अवश्य ही बातें करेंगे। और आपके नेतृत्व में ही भारत ने पहले ही प्रयास में एक बहुत बड़ा कारनामा किया। अगर हम स्पेस रिसर्च की बात करें या स्पेस एक्सपेडिशन की बात करें तो राधा कृष्णन का एक बेहद अहम मकाम उन्होंने हासिल किया है और देश को लेकर गए हैं वो एक ऐसी ऊंचाई तक, जिसके बारे में थोड़ी देर में मैं आपके साथ अवश्य विस्तार से बात करूंगी। लेकिन उससे पहले और भी कुछ घटनाओं का जिक्र अगर मैं करना चाहूँ तो 1969 में कारगिल युद्ध में शहीद हुए मेजर मनोज तलवार का आज ही के दिन जन्म हुआ था, उनकी जयंती है आज। इसके अलावा 1976 में विद्रोही कवि, संगीतज्ञ और दार्शनिक काजी नजरुल इस्लाम का आज ही के दिन निधन हुआ था, उनकी पुण्यतिथि है और इस मौके पर हमारी तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।

0: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
1: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम सुहानी सुबह चैनिका के साथ। और अभी फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 7:20 और 1 सेकेंड। आज एक और बेहद ख़ास दिन है, आज है नेशनल स्पोर्ट्स डे। और हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के प्रतिष्ठित हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है, एक वार्षिक उत्सव है हमारा। और हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के खेल के प्रति अद्वितीय कौशल और समर्पण ने, हम सब जानते हैं कि हॉकी की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी। वर्ष 1926 से 1948 तक अपने खेल करियर के दौरान मेजर ध्यानचंद ने 1000 से ज्यादा गोल किए और भारत को 1928, 1932 और 1936 में लगातार 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक दिलवाए। तो आज का ये जो दिन है ना, राष्ट्रीय खेल दिवस, लोगों को शारीरिक फिटनेस, खेल और समग्र स्वास्थ्य के महत्व की याद दिलाता है। हम अपने अंदर न जाने कितनी सारी मुश्किलें, कितनी सारी आफतें समेटे हुए रोज की ये जो जिंदगी है, इसकी जद्दोजहद में फंसे रहते हैं। तो फिर जो छूट जाता है पीछे, वो है हमारा स्वास्थ्य। हम सोचते नहीं एक बार भी थम कर, रुक कर, कि ये जो दिशा हमने ली है, जिसकी तरफ हम दौड़े जा रहे हैं, अगर हमारा स्वास्थ्य पीछे रह जाता है, अगर हमारे शरीर की तरफ, हमारे मन की तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या इस दौड़ में हम अंतिम पड़ाव तक पहुंच पाएंगे, अपनी मंजिल को पा पाएंगे? सोचते ही नहीं हम, बस इस वजह से होता ये है कि ये जो हमारा आस्पेक्ट है हमारी जिंदगी का, वो छूट जाता है। हमें समझ नहीं आता कि ध्यान देने की ज़रूरत है स्वास्थ्य पर, ध्यान देने की ज़रूरत है अपनी वेलबींग पर। तो कह सकते हैं कि ये जो दिन है, खास दिन, ये हमें बस रिमाइंड करता है कि

अपनी तरफ भी ध्यान रहना है, फिट रहना है। और फिट रहने के लिए केवल और केवल अगर आप ये सोचें कि बस खेलना ही आवश्यक है, तो ये तो नहीं सच बात, क्योंकि आप किसी भी तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं। किसी एक पारंपरिक आउटडोर गेम के साथ ही अगर आप जुड़े हैं तभी आप फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अलग अलग तरीके से अपने आप को फिट रख सकते हैं। आप डांस कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉकिंग पे जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका ध्यान रखेंगी अगर आप इन बातों का ध्यान रखें। तो इस विषय पर अवश्य ही गौर फरमाएं। और फिलहाल यहाँ पर एक और गीत का स्कोप बन रहा है, तो चलिए सुनते हैं एक और खूबसूरत सा हिंदी फिल्मी नगमा। आप लोग जुड़े हुए हैं जैनिका के साथ। कार्यक्रम का नाम है सुहानी सुबह। मन्ना दी की आवाज़ में एक फूल दो माली से ये खूबसूरत सा गाना।

22/9/2026 को पूर्वाह्न 11 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट के माध्यम से 137वीं यानी 137th डाक एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं एवं डाकघरों से पेंशन लेने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन दावों से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यूरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री एससी दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और यह डाक क्या ईमेल आईडी cpmg_wb@indiapost.gov.in या फिर adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 31/8/2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के जरिए डाक एवं पेंशन अदालत में अवश्य उपस्थित हों। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा ग्राहक संतुष्ट से दूरभाष संख्या 0332210250 या फिर 0332210612 या 0332210500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत या पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। इसके साथ ही ये भी ध्यान में रखना है कि डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना समाप्त हुई।

सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह हंड्रेड पॉइंट वन एफ एम गोल्ड पर।

बिल्कुल सही, आप कहीं जा ही नहीं सकते हमसे रूठकर, हमारे साथ ही आप रहेंगे, पूरा यकीन है हमें। सुन रहे हैं आप कार्यक्रम सुहानी सुबह चैनिका के साथ, ओनली ऑन FM गोल्ड कोलकाता, 100.1 FM गोल्ड कोलकाता पर सुहानी सुबह के अंतर्गत अब समय हो चला है कि हम सरसरी से निगाह डाल दें वेदर की तरफ। मौसम का हाल ताज़ा जानकारी के मुताबिक कैसा रहने वाला है, चलिए आपको बताती हूँ। पहले तो बीते हुए दिन की तरफ अगर हम नज़र डालते हैं तो पता चलता है कि अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया और वहीं न्यूनतम तापमान जो है वो 27.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड हुआ था। और अपेक्षित आर्द्रता अगर करें तो सर्वोच्च अपेक्षित आर्द्रता 94% दर्ज की गई और न्यूनतम अपेक्षित आर्द्रता 69% दर्ज हुई। और आज के दिन की अगर बात करें तो आसमान जो है वो मूलतः बादलों से ढका रहेगा और कुछ एक बौछारें बारिश की आपके नसीब में शायद आज भी लिखी हुई हैं, हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

और साथ ही आंधी तूफान आने की भी आशंका है। और हमारे जो मछुआरे भाई हैं उनके लिए खासतौर पर चेतावनी जारी की गई है मौसम विभाग द्वारा। जो लिखते हैं, कहते हैं इस चेतावनी में कि तेज हवाएं चलेंगी 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 35 से 45 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से स्क्वॉली विंड, और ये जो रफ्तार है ये बढ़ सकती है 55 किलोमीटर प्रति घंटे तक। तो हमारे जो मछुआरे भाई हैं उनको ये हिदायत दी जाती है कि वो कृपया समुद्र की तरफ कूच ना करें, नॉर्थ बे ऑफ बंगाल इलाके में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बांग्लादेश के तटवर्ती इलाकों में और नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में ये जो परिस्थिति है ये बनी रहने वाली आज से, यानी 29/8/2026 से 31/8/2026 तक, 29th से 31st अगस्त तक आपको ये हिदायत दी जाती है, आपको ये गुजारिश की जाती है कि आप लोग कृपया समुद्र की तरफ कूच ना करें, डीप सी में आप ना जाएं, क्योंकि इस तरह का माहौल रहने वाला है। तो आपकी जो सुरक्षा है वो हमारे लिए मायने रखती है, तो आप ज़रूर ध्यान रखें मौसम विभाग द्वारा दी गई इस चेतावनी का।

और चलिए अब देख लें अखबार की इन पृष्ठों की तरफ एक बार और जान लें कि कौन सी ऐसी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में है। मैं ये पढ़ पा रही हूं कि एनटीए ने यूजीसी नेट 2026 की 84 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की एक खबर वो ये कि वार्षिक अमरनाथ यात्रा पारंपरिक छड़ी मुबारक की रस्मों के साथ संपन्न हो गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों के हितों से समझौता न करने का आश्वासन दिया है। और केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के विकास में व्यावसायिक उत्कृष्टता और सुशासन के साथ साथ चलने पर जोर दिया है। देश के औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि जो दर है इसकी इस वर्ष जुलाई में 6.7% रही है। भी एक खबर जो मेरा ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। इसके अलावा मैं देख पा रही हूँ कि राष्ट्रीय शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी आज उज्बेकिस्तान की यात्रा पर रवाना होंगे। और नेपाल से जुड़ी एक खबर वो ये कि हम सब जानते ही हैं कि किस तरह से वो देश विध्वस्त है और पूरी दुनिया से जो पर्यटक वहाँ पहुँचे वो सब वहाँ पर फंसे हुए हैं। कितने लोग लापता हैं, मिल नहीं पा रहे हैं। बहुत कठिन समय है नेपाल के लिए। और ऐसे में भारत ने नेपाल में बचाव और राहत कार्यों के लिए 47 टन से ज्यादा आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। 320 भारतीय नागरिकों से अभी भी कोई संपर्क नहीं हो पाया है। और इसके अलावा एक और मैं खबर ये देख पा रही हूँ वो ये है कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 4 राज्यों और लक्षद्वीप के दौरे पर हैं। फिलहाल समय 7:45:23, ज्यादा समय शेष नहीं हमारे बीच। तो ये जो अखबार की सुर्खियों से मैंने आप तक खबरें पहुंचाई, इसके बाद चलिए ना फिर से सुन लेते हैं एक सुरीला सा गीत और उसके बाद फिर से मैं लौटती हूँ। आप लोग बने रहिए मेरे साथ ओनली ऑन FM गोल्ड कोलकाता।

मेरा साया फिल्म से हमने ये गीत सुना। मदन मोहन का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज और गीतकार थे राजा मेहदी अली खान। और अब चलिए, क्योंकि आज नेशनल स्पोर्ट्स डे है, तो हमारी ये जो खबरों की जो बात हुई अखबार की सुर्खियों से मैंने अब तक कुछ खबरें पहुंचाई तो वो अधूरी रह गई, क्योंकि खेल की किसी भी खबर की मैंने बात आपको नहीं बताई, आप सोच रहे होंगे, तो ये छूटना नहीं चाहिए। तो अच्छी खबर, दो अच्छी खबरें मैं दूंगी फिलहाल। एक तो ये कि भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने इतिहास रचा है, ग्रैंड शतरंज टूर जीतने वाले आप पहले भारतीय बने हैं। और एक अच्छी खबर ये कि वेलवन सेंथिल कुमार, जो हमारी देश के 8th सीडेड हैं, उन्होंने पीएसए बुडापेस्ट स्क्वॉश ओपन 2026 का खिताब जीत लिया है। हंगरी के 9th सीडेड बालास फारकास को आपने फाइनल में हराया है। और चलिए अब बात करें उस व्यक्तित्व की जिन्होंने स्पेस रिसर्च की दुनिया में देश को नई ऊंचाइयां दी हैं। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर के राधाकृष्णन की, आज उनका जन्मदिन है। देश के जाने माने वैज्ञानिक हैं, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के अध्यक्ष रह चुके हैं और आपका जन्म आज ही के दिन 1949 में केरल में हुआ था। केरल विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी में आपने स्नातक किया, उसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु से अपना पीजीडीएम पूरा किया और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर से भारतीय भूप्रेक्षण प्रणाली के लिए कुछ रणनीतियां शीर्षक से आपकी थीसिस के लिए डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1971 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में अपने करियर की शुरुआत की थी और सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV जो है हमारा, उस प्रोजेक्ट में एक बहुत अहम भूमिका आपने निभाई और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर भी आप रह चुके हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन के मार्गदर्शन में, जैसे मैंने कहा, एक बहुत बड़ा करिश्मा देश ने किया, वो था मंगलयान। तो आपके मार्गदर्शन में इसरो ने मंगलयान मिशन को प्रथम प्रयास में ही मंगल तक पहुंचाने का करिश्मा कर दिखाया था, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है देश के लिए। 2009 से 2014 तक आप इसरो के अध्यक्ष रहे और आपके नेतृत्व में भारत ने चंद्रयान एक मिशन, मंगलयान और जी सैट श्रृंखला के उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जैसे सैटेलाइट संचार, रिमोट सेंसिंग और अंतरिक्ष विज्ञान। 2000

2014 में पद्म भूषण से आपको सम्मानित किया गया और आपके नेतृत्व और वैज्ञानिक योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से आपको नवाजा जा चुका है।

और चलते चलते आप सबके लिए एक बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आप जानते हैं कि भारत के पास पूरी दुनिया का सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। हमारे पास 160,000 पोस्ट ऑफिस हैं और जिनमें एक फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस भी शामिल है जो श्रीनगर के डल लेक पर स्थित है। और इसी के साथ चैनिका लेती है इजाजत, तो चलते चलते आप सबको छोड़े जाएगी इस खूबसूरत गीत के साथ, आराधना फिल्म से, आप सबके लिए किशोर कुमार की आवाज। दिन आपका बहुत अच्छा बीते, सुहानी सुबह की तरह सुहाना दिन भी हो, सुहानी शाम और रात भी हो। इसी के साथ चैनिका कहती टाटा बाय बाय, सुनते रहें, साथ रहें।

0: आज देश में हर एक सेकंड में होते हैं 1 करोड़ रुपए के यूपीआई पेमेंट्स और हैं 81 करोड़ से ज्यादा यूपीआई पेमेंट पॉइंट्स।
1: स्ट्रीट वेंडर से लेकर आपकी गाड़ी के शोरूम तक आपकी सारी पेमेंट सिर्फ एक क्यूआर कोड स्कैन करके हो जाती है।
0: यूपीआई के 10 साल डिजिटल आत्मनिर्भर बेफिक्र।
2: मेरी बैंक हमेशा मेरे साथ चलती है। सुबह उठती हूँ तो पैसे जमा कर आती है, कस्टमर ज्यादा हो जाते हैं तो पूरा गल्ला संभाल लेती है, आधी रात को भी उठा के बताती है कि मैडम लक्ष्मी फल भंडार का पेमेंट आ गया है। जनधन बैंक खाता क्या मिला मुझे, तो उंगलियों के छोर पर बीमा, पेंशन, डीबीटी, सारी बैंकिंग सुविधाएं मिल गई हैं।
3: 12 साल में 59 करोड़ जनधन खाते खुले, जिसमें 56% खाते तो सिर्फ महिलाओं के हैं। पीएम जनधन योजना के 12 साल, ज्यादा बचत, ज्यादा काम।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जैवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 589, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। श्री मोदी यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
5: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद

0: में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि ये समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
1: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308-8718, 0112308-8719। आप व्हाट्सएप नंबर 99682-919-88 और ईमेल situationroom@mea.gov.in के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर 977-98513-16807 पर संपर्क कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने विदेश मंत्रालय से नेपाल में आई बाढ़ में लापता राज्य के लोगों की तलाश के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजने की अनुमति मांगी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अनुमति मिलते ही एक प्रतिनिधिमंडल काठमांडू भेजा जाएगा। इसमें राज्य के एक मंत्री, एक विधायक, महानिरीक्षक स्तर के पुलिस अधिकारी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: आपको हर खबर से रखे अपडेट, एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और पब्लिक पर एट AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी।
2: सरकार ने कहा है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है और उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध कराने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि हाल के दिनों में चीनी मिलों से बाहर चीनी की कीमतों में लगभग 20% की गिरावट आई है, जबकि खुदरा चीनी की कीमतें भी कम होने लगी है। नए सीजन के लिए गन्ने की पेराई 15 अक्टूबर से शुरू होगी और इस दौरान 10 लाख टन से अधिक चीनी के उत्पादन का अनुमान है। सरकार ने चीनी मिलों को अक्टूबर में उत्पादित चीनी को बिना किसी प्रतिबंध के बेचने की अनुमति दे दी है। इससे ये सुनिश्चित हो सकेगा कि नए सीजन का उत्पादन शीघ्र घरेलू बाजार में उपलब्ध हो सके। नवंबर में चीनी उत्पादन लगभग 45 लाख टन रहने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में CNG के मूल्य में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की वृद्धि की गई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी में CNG की कीमत 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। संशोधित CNG कीमतें आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई हैं। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम और लक्षद्वीप के 3 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वे शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, सांस्कृतिक विरासत, उद्योग, अकादमिक सहयोग, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने से संबंधित कार्यक्रमों के अलावा कुछ प्रमुख सार्वजनिक समारोह में भी भाग लेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
3: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। मौसम विभाग ने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गंगा किनारे वाले क्षेत्र, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी कल तक तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग ने उड़ीसा के कई जिलों के लिए तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालाज फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालाज फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता NYOVNG को 3-0 से हराया। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: हर खबर से जुड़े रहिए, जहां भी हो expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
5: धन्यवाद फरहत। विनाशकारी जल प्रलय से जूझ रहे नेपाल की त्रासदी की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी हैं। राजस्थान पत्रिका लिखता है, पल पर प्रलय का खौफ, झील टूटी तो घर छोड़कर पहाड़ों पर भागे लोग।

0: जनसत्ता ने त्रिशूली में नेपाली सेना द्वारा लोगों को बचाए जाने की तस्वीरें दी हैं। पत्र लिखता है, अब भी 320 भारतीय लापता। चीन में फंसे 400 लोग सुरक्षित। नवभारत टाइम्स ने नेपाल में सैलाब शीर्षक से बचाव अभियान पर लिखा है, चुनौतियों के बीच अब जिंदगी बचाने की जंग। अमेरिका से 100 जेवलिन मिसाइलें खरीदेगा भारत, अमेरिकी राजदूत सर्जियो गौर ने दी जानकारी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हिंदुस्तान ने रक्षाबंधन के अवसर पर बच्चों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, पीएम मोदी की कलाई पर सजा बच्चों के प्यार का धागा। नशे के खिलाफ एकजुट हो रही देहरादून के थानी गांव की महिलाएं, नशे के कारोबार से गांव को बचाना है लक्ष्य, जनसत्ता की सुर्खी है। सोना 26 साल बाद सबसे बड़े मासिक उछाल की तरफ, अगस्त में दाम 14% बढ़ चुके, दैनिक भास्कर की खबर है। अमर उजाला ने अपने कारोबारी पन्ने पर शेयर बाजार से जुड़ी खबर प्रकाशित की है, आईटी शेयरों ने दिया बाजार को सहारा, सेंसेक्स निफ्टी में 2 दिन की गिरावट थमी। शिक्षा की दीवार से आसान हो रही पढ़ाई, सरकारी स्कूल में नवाचार, निजी स्कूलों से हटा सरकारी में कराया प्रवेश। मध्य प्रदेश के सीहोर में इस योजना के माध्यम से अंग्रेजी सीखने के सरल तरीके को अपनाया जा रहा है, राजस्थान पत्रिका की खबर है।
1: धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर। भारत ने अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 579 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। सरकार चीनी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1 सितंबर से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करेगी। और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालाज फारकश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today to enhance economic and defense cooperation. India signs deal with United States to procure Javelin anti-tank guided missile systems. Death toll in Nepal flash floods rises to 579, while 1,924 people still missing. India steps up humanitarian assistance to the neighboring country. Government to introduce fortnightly sugar allocation system from next month to ensure availability of sugar in market on time. And India's Vilavan Senthil Kumar wins PSA Budapest Swash Open title, beating Balázs Farkas of Hungary. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic beginning today. On the first leg of his 2-day visit, he will reach Uzbekistan. He will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. This will be Mr. Modi's 4th visit to Uzbekistan. The Prime Minister's office in a statement said, during his visit, he will hold delegation-level talks with President Mirziyoyev to further strengthen the strategic partnership between India and Uzbekistan. Our correspondent has the details.
3: During the visit, both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. India is among top 10 trade partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion, which is the result of the manifold increase of the trade in last few years. Medical, mining and defense are few of the important sectors in which there is a lot of potential for cooperation. India has long-standing and wide-ranging cooperation with Uzbekistan in the field of defense. A joint working group on defense was established in 2019. India and Uzbekistan regularly participate in joint military exercises, Dostlik, and the 7th edition of this exercise was conducted in Uzbekistan in April 2026. In view of this, the visit of PM Modi becomes very important and is expected to lay the foundation for further cementing strategic and business partnership between both countries. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Tashkent.
2: On the second leg of his visit, the Prime Minister will travel to Bishkek on a 2-day visit to participate in the 26th Shanghai Cooperation Organization SCO Summit.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के निमंत्रण पर ताशकंद जा रहे हैं। ये प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की 4थी यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री यात्रा के दौरान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे के समय सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है। 1924 लोग अब भी लापता हैं। अब तक 579 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन दर्शाता है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन के अमेरिका यात्रा पर हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी

0: दुनिया। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा के मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वो उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगुनविस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि वो ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि ये केंद्र दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे के समय सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है। 1924 लोग लापता हैं। लापता लोगों में पनबिजली परियोजना से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंकरोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन मिसाइल की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमेरिकी समर्थन दर्शाता है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं, जहां वो G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी।

0: after defeating home favourite Bals Farkas 3-0 in the final. He had an impressive run to the title, beating world number 18 and Asian Games gold medalist Yan Yung Ning 3-0 in the quarterfinals, before overcoming fellow Indian Veer Chotrani 3-2 in a thrilling semi-final. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Orissa during next 2 to 3 days. Heavy rainfall is also likely to prevail over Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Gangetic West Bengal, Uttarakhand and northeastern parts of the country till tomorrow. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 4 दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रवाना। श्री मोदी ने कहा यह यात्रा मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत और सभ्यतागत संबंधों को प्रगाढ़ करेगी। भारत ने अमेरिका से जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 579 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की और भारत के वेल्विन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालास फारकर्ष को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले दिए बयान में विश्वास व्यक्त किया कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्री मोदी ने कहा कि वे ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि ये केंद्र दोनों देशों के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों के प्रतीक हैं।
2: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। 2019 में रक्षा मामलों पर एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना की गई थी। भारत और उज्बेकिस्तान नियमित रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यास दोस्तलिक में हिस्सा लेते हैं और इसका 7वां संस्करण अप्रैल 2026 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। इन सभी क्षेत्रों के लिहाज से प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और व्यापारिक साझेदारी को और मजबूत करने की नींव रखी जाएगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जापरोफ के निमंत्रण पर वे बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। उज्बेकिस्तान में भारत के राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी।
3: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
1: भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा है कि भारतीय सेना ने जेवलिन की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन दर्शाता है। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या बढ़कर 579 हो गई है, 1924 लोग अब भी लापता हैं, जबकि 101 घायल लोगों का अस्पतालों में उपचार चल रहा है। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग,

0: देशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी भी शामिल हैं। भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि सहायता सामग्री में पोर्टेबल जनरेटर, खाद्य सामग्री और जल शोधन की गोलियां शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बचाव अभियान के लिए चिकित्सकों, पैरामेडिक्स और रेकी टीम सहित 11 सदस्यीय दल भी मौके पर मौजूद है। उन्होंने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेपाल बाढ़ के बाद से 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो सका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि लगभग 100 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। नई दिल्ली में कल श्री जायसवाल ने कहा कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में लगे 63 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। तमिलनाडु के 21 भारतीय नागरिक काठमांडू से कल नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में कल इन 21 तीर्थयात्रियों से मुलाकात की। उन्होंने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 2400 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि काठमांडू और पेचिंग में भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे कार्यरत हेल्पलाइन शुरू की है। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर हैं 0112308-8718, 0112308-8719। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल आईडी है situationroom@mea.gov.in। विदेश मंत्रालय काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन संपर्क नंबर से भी कर सकते हैं 9779851316807। इसके अलावा पेचिंग स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क किया जा सकता है, नंबर है 1851-4284-905। नेपाल बाढ़ से सुरक्षित बचे 21 पर्यटक कल रात चेन्नई पहुंच गए। पर्यटकों ने सुरक्षित चेन्नई वापसी के लिए केंद्र और राज्य सरकारों का आभार व्यक्त किया। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि यह समझौता अमरीका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमरीका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। अमरीकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन के अमेरिका दौरा पर रहे हैं, जहां वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। श्रीमती सीतारामन बृहस्पतिवार को कनाडा के 3 दिन के दौरे के बाद शिकागो पहुंची, जहां उन्होंने भारत कनाडा आर्थिक और वित्तीय संवाद किया था।
2: वित्त मंत्री शिकागो में प्रमुख निवेशकों के साथ गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी और निजी क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, अध्यक्षों और वरिष्ठ प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगी। इन बैठकों में भारत में निवेश के अवसर, आर्थिक दृष्टिकोण और भारत अमेरिका व्यापार तथा निवेश साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होगी। श्रीमती सीतारामन शिकागो विश्वविद्यालय के पोल्सकी सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन का दौरा करेंगी। वित्त मंत्री अपनी यात्रा के दौरान शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत करेंगी। एशविले में सुश्री सीतारामन की अध्यक्षता में आयोजित G20 सदस्य देशों के वित्त मंत्री, केंद्रीय बैंक गवर्नर तथा वरिष्ठ आर्थिक अधिकारी वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। ये बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगी। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने H-1B और अन्य विदेशी पेशेवरों को रोजगार समाप्त होने के बाद मिलने वाली 60 दिन की स्वैच्छिक छूट अवधि समाप्त करने के प्रस्ताव की समीक्षा पूरी कर ली है। इससे हजारों भारतीय कामगार और उनके परिवार प्रभावित हो सकते हैं। ये प्रस्ताव 6 अगस्त को व्हाइट हाउस के सूचना और नियामक कार्यालय को प्रस्तुत किया गया था। समीक्षा में बाद मौजूदा 60 दिन की छूट अवधि लागू रहेगी। भारत के विल्वन सेंथिल कुमार ने PSA बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीत लिया है। फाइनल में कल सेंथिल ने हंगरी के बालास फारकश को लगातार गेम में 3-0 से हराकर ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की। सेंथिल कुमार ने बालास फारकश को 11-4, 11-2, 11-3 से हराकर ट्रॉफी जीती। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने विश्व में 18वीं वरीयता प्राप्त और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता NUMNG को 3-0 से पराजित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से चार दिन की उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की यात्रा पर रवाना।

श्री मोदी ने कहा यह यात्रा मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत और सभ्यतागत संबंधों को प्रगाढ़ करेगी। भारत ने अमरीका से जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेपाल बाढ़ में बनने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई, 1924 लोग अब भी लापता। भारत पड़ोसी देश को मानवीय सहायता बढ़ा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की और भारत के वेलवन सेंथिल कुमार ने हंगरी के बालास फारकाश को हराकर पीएसए बुडापेस्ट स्क्वैश ओपन का खिताब जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी और इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में

0: सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि ताशकंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में शास्त्री स्मारक और महात्मा गांधी केंद्र का भी दौरा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध तेजी से मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री के दौरे के समय सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार में कई गुना वृद्धि हुई है। दोनों देश संपर्क सुधारने और बाधाओं को दूर करने पर चर्चा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 6 दिन की अमरीका यात्रा पर हैं। वे G20 वित्त मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगी और निवेश के अवसरों पर मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं से बातचीत करेंगी। नेपाल और तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ से मृतकों की संख्या 626 हो गई है। लगभग 2000 लोग लापता हैं। लापता लोगों में पनबिजली परियोजनाओं से जुड़े लोग, विदेशी नागरिक, आम नागरिक और सुरक्षा तथा सरकारी कर्मी शामिल हैं। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नेपाल में राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत का समर्थन दोहराया है। डॉक्टर जयशंकर ने बचाव प्रयासों के लिए नेपाल सरकार और सेना को धन्यवाद दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि चीन की ओर लगभग 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। श्री जायसवाल ने कहा कि सरकार ने विदेश मंत्रालय में 24 घंटे कार्यरत एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। भारत ने अमेरिका के साथ जेवलिन टैंक रोधी मिसाइल प्रणाली की खरीद के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश भारत में इसके संयुक्त उत्पादन की दिशा में काम कर रहे हैं। भारत में अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास ने कहा कि भारतीय सेना ने जेवलिन मिसाइल की खरीद के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि यह समझौता भारतीय सेना के लिए अमरीकी समर्थन को दर्शाता है। संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू इस महीने की 31 तारीख से 2 दिन की सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह बैठक गुट निरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्राध्यक्ष या सरकार प्रमुख के पहले सम्मेलन की 65वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही है। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का फैसला किया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has left for his 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic this morning. In his departure statement, Mr. Modi expressed confidence that his visit to Uzbekistan and the Kyrgyz Republic will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. He said that in recent years, India-Uzbekistan strategic partnership has seen significant advancement. The Prime Minister said that he is looking forward to having discussions with the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, on further deepening cooperation in trade and investment, digital

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल सी, विंध्याचल के

0: आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

बहुत बहुत स्वागत आप सबका कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद में। चैनिका है आप सबके साथ हाजिर एफएम गोल्ड कोलकाता पर। और इससे पहले कि मैं कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं, आप सबके लिए एक जरूरी सूचना। हल्की से मध्यम बारिश और साथ में गरज के साथ छींटे पड़ने और बिजली गिरने की चेतावनी जताई गई है। साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। और ये जो चेतावनी है मौसम विभाग द्वारा दी गई है पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान और बांकुड़ा जिलों के लिए। आने वाले 2 से 3 घंटों में पुरुलिया, पश्चिम बर्धमान और बांकुड़ा जिले के लिए ये चेतावनी दी गई है मौसम विभाग की तरफ से। तो आप सब सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें और हमारे साथ जुड़े रहें। आज का ये जो कार्यक्रम है, यहां हम बात करेंगे एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने अपनी आवाज से तमाम सितारों के करियर को ऊंचाइयां दी। मोहम्मद अजीज हिंदी सिनेमा के उन गायकों में शामिल हैं जिनकी आवाज पहचान बनी न जाने कितने हीरोज की, और शोहरत का हर आसमान नापने वाले मोहम्मद अजीज उर्फ मुन्ना का बड़ा ही गहरा नाता है हमारे राज्य से, हमारे शहर से। हम याद करेंगे मोहम्मद अजीज को आज के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है लो आ गई उनकी याद। दो जुलाई 1954 को आपका जन्म हुआ था गुमा में, और पूरा नाम रखा गया सईद मोहम्मद अजीत उल नबी। अक्सर रेडियो पर आप गाने सुना करते, और जब भी मोहम्मद रफी का कोई गाना बजता वैसे ही तल्लीन हो जाते आप जैसे मर्फी रेडियो के विज्ञापन का मुन्ना दिखता था। और इसी के चलते मोहम्मद अजीज को बचपन में सब लोग प्यार से मुन्ना कहकर बुलाने लगे। तमाम गानों के क्रेडिट में उनका नाम मोहम्मद अजीज की बजाय मुन्ना अजीज ही लिखा मिलता है। आज आप ही के द्वारा गाए गए कुछ बेहतरीन गीतों की बात होगी और आपके फिल्मी करियर की भी बात होगी, लेकिन साथ में आपके द्वारा गाए गए इन गीतों से हम अपने आप को सराबोर करेंगे। तो चलिए, ये पहला गीत जो सुना हमने उसके बारे में बता दूं आपको चंद बातें। आखिर क्यों फिल्म का ये गीत था? संगीतकार थे राजेश रोशन, गीतकार थे इंदिवर, और अब जो मैं आपको गीत सुनवाने जा रही हूं वो है रामलखन फिल्म से। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने। सुभाष घई की मैग्नम ओपस इस फिल्म में, इस गाने में मोहम्मद अजीज के साथ अनुराधा पौडवाल और नितिन मुकेश ने अपनी आवाज मिलाई है।

0: बीते हुए पल लेके आई है यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
1: आज हम बात कर रहे हैं मोहम्मद अजीज की, और उनकी रोजी रोटी मोहम्मद रफी के गानों से करीब 2 दशकों तक चलती रही। कोलकाता के एक रेस्टोरेंट में वो मोहम्मद रफी के गाने सुनाया करते, और जो उनके श्रोता होते वहाँ वो वाहवाही करते उनकी, और कभी कभी अच्छी बख्शीश भी उनको मिल जाती थी। और इस रेस्टोरेंट में उस दौर के तमाम बड़े फिल्म निर्माता भी आया करते थे। तो बांग्ला सिनेमा में मोहम्मद अजीज की एंट्री इसी रेस्टोरेंट में मिले फिल्म निर्माताओं के चलते हुई, और उन्होंने बतौर पार्श्व गायक पहला गीत 1984 में बनी बांग्ला फिल्म ज्योति के लिए गाया। और इस फिल्म के निर्माता की मुलाकात भी आपकी इसी रेस्टोरेंट में हुई थी। और इस फिल्म में गाने के बाद मोहम्मद अजीज संगीत की दुनिया में नाम कमाने के लिए मुंबई पहुंचे। उस दौर का मुंबई था वो। ज्योति में गाने के बाद मोहम्मद अजीज को 1984 में ही फिल्म अंबर में, हिंदी फिल्म अंबर में गाने का मौका मिला, और इसी दौरान उनकी मुलाकात संगीतकार अनु मलिक से हुई। अनु मलिक ने भी उस समय हिंदी सिनेमा में बहुत ही कठिन समय देखा था, देख रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। तो कुछ दिनों बाद 1985 में अनु मलिक ने मोहम्मद अजीज के सामने अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द में मर्द तांगे वाला गाने गाने का प्रस्ताव रखा, और उन्होंने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। अब कौन नहीं गाना चाहेगा अमिताभ बच्चन के लिए, महानायक के लिए। और इस गाने को गाने के बाद उनका नाम पूरी हिंदी सिनेमा में फैल गया। इसके बाद तो मोहम्मद अजीज ने गोविंदा के लिए, ऋषि कपूर के लिए, सनी देओल के लिए और अनिल कपूर जैसे बहुत सारे अभिनेताओं के लिए अपनी आवाज़ दी, और लता मंगेशकर, आशा भोसले और अनुराधा पौडवाल जैसे कई बेहतरीन गायिकाओं के साथ आपने युगल

बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।

सुन रहे हैं आप कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद और बैक टू बैक दो गाने मैंने आपको सुनवाए। पहला गीत था फिल्म शहनशाह से, लता मंगेशकर ने आवाज़ दी मोहम्मद अजीज के साथ, और संगीतकार थे अमर उत्पल और गीतकार इस गीत के थे आनंद बख्शी। और उसके बाद हमने सिंदूर फिल्म का गीत सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था, आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, और जोड़ी वही प्लेबैक सिंगिंग वाली लता मंगेशकर मोहम्मद अजीज। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का जब नाम उठा है तो ये बात, मतलब कुछ बातें, चंद बातें इनके बारे में ज़रूर कहनी चाहिए कि जब मोहम्मद अजीज हिंदी सिनेमा में आए तो उस समय संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी शिखर पर थी, और मर्द के बाद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की नज़र मोहम्मद अजीज पर गई। तो 1986 में उन्होंने फिल्म आग और शोला में अपने संगीत पे उन्हें गाने का मौका दिया, और उसके बाद मोहम्मद अजीज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की पहली पसंद बन गए, और उस दौर में उन्होंने बहुत सारा काम किया। तकरीबन 30 से ज़्यादा फिल्मों में आपने काम किया एलपी के लिए, और इनके साथ की गई कुछ बेहतरीन फिल्मों में हम याद करते हैं खुदा गवाह को, वतन के रखवाले को, राम लखन, लव 86, बीवी हो तो ऐसी, और चालबाज। और जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी का ढलान आया तो मोहम्मद अजीज़ का करियर भी धीरे धीरे उतरने लगा, और तब ये संगीतकार जोड़ी उदित नारायण और कुमार शानू जैसे नए गायकों को प्रेफर करने लगी। लेकिन इस बात से हम बिल्कुल भी मुंह नहीं फेर सकते कि बहुत ही उम्दा रहा वो समय जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए मोहम्मद अजीज गाते थे। उनके करियर को तो इससे फ़ायदा मिला ही, साथ ही मोहम्मद रफ़ी की जो कमी शायद खल रही थी लक्ष्मी प्यारे को, वो मोहम्मद अजीज ने पूरी कर दी थी। और इस जोड़ी के बाद अब एक और ऐसे संगीतकार की मैं बात करूंगी जिनके साथ बहुत खूबसूरत गाने गाए मोहम्मद अजीज ने, नाम है उनका विजू शाह। तो अभी फिलहाल आप सबको मैं सुनवाती हूँ त्रिदेव फिल्म का ये गाना, जहाँ पर साधना सरगम और साथ में आज की

ये जो खास पर्सनालिटी है, जो खास व्यक्तित्व है, उनके गाने हम आपको सुनवा रहे हैं। तो युगल गाना आप सबके लिए, सुनते रहें, साथ रहें, कार्यक्रम जारी है। लो आ गई उनकी याद।

0: याद 100.1 FM गोल्ड पर लो आ गई उनकी याद,
1: लो आ गई उनकी याद
0: 100.1 FM गोल्ड पर
2: मोहम्मद अजीज उन गायकों में से हैं जिन्होंने हिंदी के साथ साथ क्षेत्रीय संगीत में भी काम किया और उसको बढ़ावा दिया। कोलकाता में परवरिश होने के कारण आपको बांग्ला और ओडिया भाषा पर अच्छी पकड़ थी और हिंदी के साथ साथ बांग्ला और ओडिया फिल्मों में भी आपने काम किया, गाने गाए। और इसके अलावा हम अगर इनके करियर की तरफ देखें तो एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने हैं, जैसे आज के इस कार्यक्रम में भी हमने ये गाने शामिल किए हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि भले ही आपने महान हस्ती मोहम्मद रफ़ी को अपना गुरु मानकर अपनी शुरुआत की, उस तरह से गाने का प्रयास किया, लेकिन और भी जितने गायक हैं जो मोहम्मद रफ़ी की तरह अपनी पेशकश करते आए हैं, उनमें सबसे अग्रणी, सबसे बेहतर अगर किसी को माना जाएगा तो मोहम्मद अजीज़ को ही माना जाएगा। एक बार उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि अगर कोई मोहम्मद रफ़ी का 5% भी गाने के लायक हो जाता है तो उसे देश का बेस्ट सिंगर कहा जा सकता है। मैंने अपनी शुरुआती संगीत शिक्षा किसी दूसरे संगीतज्ञ से ली है, लेकिन मैं रफ़ी साहब को ही अपना गुरु मानता हूँ। बहुत सारे सुपरहिट गानों में अपनी आवाज़ आपने दी और वो गीत आज भी नए हैं, आज भी बेहद फ्रेश हैं, उतने ही पेपी हैं, उतने ही मेलोडियस हैं। और ऐसा ही ये गीत मीरा का मोहन से आपको सुनवाना चाहूँगी। इंदिवर ने लिखा था और संगीतकार थे अरुण पौडवाल।

और इसी के साथ कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद यहीं पर हम समेटेंगे। चलते चलते आप सबके लिए मोहम्मद अजीज का एक और खूबसूरत सा गाना युगल गीत साधना सरगम के साथ, फिल्म का नाम खुदगर्ज और संगीतकार इस गीत के राजेश रोशन। गीत को लिखा था इंदिवर और फारूख कैसर ने। सुनते रहें, साथ रहें एफएम गोल्ड कोलकाता। चैनिका कहती है टाटा बाय बाय।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत तथा यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस यात्रा के दौरान दोनों नेता ताशकंद में द्विपक्षीय महत्व के सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापारिक साझेदारों में से एक है, जिनके बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग $1 अरब का है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच कारोबार तेजी से बढ़ा है। चिकित्सा, खनन और रक्षा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच व्यापक सहयोग की शुरुआत हो चुकी है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: भारत अर्जेंटीना संयुक्त व्यापार समिति की चौथी बैठक ब्यूनस आयर्स में हुई। बैठक में वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्जेंटीना यात्रा के दौरान तय कार्य योजना की समीक्षा की गई। दोनों देशों ने रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक में खनन, ऊर्जा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निवेश के अवसरों पर भी चर्चा हुई। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। केंद्रीय भंडारण निगम ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CEWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। श्री पेजश्कियान की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना करना पड़ रहा है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। हर वर्ष 29 अगस्त को भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: least 1 hour on the sports field to remain fit and healthy.
1: आज National Sports Day के अवसर पर
2: The occasion of National Sports Day, a 1 hour sports activity has been organized across the country to promote the Fit India movement. Since this morning, I have been receiving information that lakhs of young people across the country have come out to play for an hour in playgrounds and in every street. I am happy to see that the country is changing under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.
1: मुझे खुशी है मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा
0: मिस्टर मेघवाल सेड ही प्लेज बैडमिंटन एवरी डे ही सेड स्पोर्ट्स हेल्प पीपल रिमेन हेल्दी एंड फिट एंड ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग स्ट्रेस अवे द गवर्नमेंट हैज बीन मेकिंग सस्टेन्ड इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया स्पोर्टिंग इकोसिस्टम विद द रिजल्ट्स इंक्रीजिंगली विजिबल ऑन द ग्लोबल स्टेज इंडियाज परफॉर्मेंसेज एट मेजर इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट्स रिफ्लेक्ट द कंट्रीज ग्रोइंग स्ट्रेंथ अक्रॉस ओलंपिक पैरालंपिक एंड मल्टी स्पोर्ट डिसिप्लिन्स India's Olympic journey has witnessed a significant transformation in the recent years. The country won 2 medals at Rio 2016, 7 at Tokyo 2020 and 6 medals at Paris 2024. India's performance at the Paralympic Games has also improved remarkably. The medal tally rose from 4 at 20 at Rio 2016 to 19 at Tokyo 2020. At Paris 2024, India recorded its best ever Paralympic performance with 29 medals. For Akashvani News, Delhi.
3: Prime Minister Narendra Modi today paid homage to the Indian hockey legend Major Dhyan Chand on the occasion of National Sports Day. In a social media post, Mr. Modi said, Major Dhyan Chand's brilliance in Indian hockey continues to inspire generations. Union Minister for Finance and Corporate Affairs Nirmala Sitharaman today highlighted India's broad-based growth, reform momentum and expanding opportunities for long-term investment in Chicago. The Finance Minister today addressed a high-level business roundtable with leading investors and business leaders. A key focus of the meeting was manufacture in India, for India and for the world, with opportunities across manufacturing, AI and digital, financial services, infrastructure, food processing, defense and advanced technologies. The India Meteorological Department IMD has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Odisha till Monday. Heavy rainfall is also likely to hit Bihar, Gangetic, West Bengal, Jharkhand, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and parts of northeastern states for the next 2 to 3 days. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on 4-day visit to Uzbekistan and Kyrgyz Republic, says visit will strengthen strategic partnerships and deepen civilizational ties with Central Asia. Death toll in Nepal flash floods rises to 626, over 2,000 people still missing. India steps up humanitarian assistance. US President Donald Trump announces biggest oil deal with Venezuela. Iranian President Masoud Pezeshkian says Tehran is open to negotiations with Washington but remains deeply cautious. National Sports Day being observed today, Prime Minister Modi pays tribute to Major Dhyan Chand and salutes dedication of sportspersons. Orange alert issued for heavy to very heavy rainfall in Odisha for next 2 to 3 days. And with that, we end the midday news.
4: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना कहा इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई 2000 से अधिक लोग अब भी लापता भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा ईरान अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है आज राष्ट्रीय खेल दिवस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा और ओडिशा में अगले 2 से 3 दिनों के लिए मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज़्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज़्बेकिस्तान और किर्गिज

0: गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और अब बात करते हैं ताशकंद में मौजूद हमारे संवाददाता सुशील चंद तिवारी से। जी सुशील, ताशकंद पहुंचने पर प्रधानमंत्री के स्वागत की क्या तैयारियां हैं वहां पर और लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप?
1: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
0: सुशील, इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख विषयों पर चर्चा होने की संभावना है वहां पर?
1: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल,
0: बहुत धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा होने की संभावना है।
2: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें, ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्चस्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। इसमें विनिर्माण, AI और डिजिटल प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाएं, अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, रक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में उपलब्ध अवसर शामिल हैं। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है, जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। इस बीच भारत ने बाढ़ प्रभावित नेपाल को मानवीय सहायता तेज कर दी है। मानवीय सहायता सामग्री के साथ तीसरा विमान कल शाम काठमांडू पहुंचा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो पाया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री जायसवाल ने बताया कि त्रिशूली वन जल विद्युत परियोजना में कार्यरत 63 भारतीय नागरिकों को प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि चीन की ओर करीब 400 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और अपने परिवारों के संपर्क में हैं। उन्होंने बताया कि एक नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है। काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे हेल्पलाइन शुरू की है। नियंत्रण कक्ष के टेलीफोन नंबर है 011-230-88-719 और 011-230-12-113। व्हाट्सएप नंबर है 9968291988 और ईमेल है situationroom@mea.gov.in। काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के आपातकालीन नंबर है +9779851316807 9779701071750 और +9798102611। बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास का नंबर है +86185142849005। समाचार कक्ष से सौरभ अग्रवाल।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: अपडेट रहे, आगे रहे। expert@airnewshindi और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि तेहरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर अत्यधिक सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। एक रिपोर्ट।
3: श्री पेजश्कियान ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर से लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजश्कियान की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। अमरीका और ईरान ने 18 जून को क्षेत्र में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्ति का समझौता किया था, जिसकी समय सीमा 17 अगस्त को समाप्त हो गई। इन वार्ताओं का उद्देश्य अंतिम समझौते तक पहुंचना था, लेकिन पिछले महीने तनाव बढ़ने के बाद इनका भविष्य अनिश्चित बना हुआ है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू 31 अगस्त से सर्बिया के बेलग्रेड में आयोजित होने वाली उच्च स्तरीय स्मृति बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। बैठक का विषय है गुट निरपेक्षता की विरासत, आज की दुनिया के लिए सबक। सरकार ने चीनी की समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा मासिक कोटा प्रणाली के स्थान पर अगले महीने से पखवाड़े के आधार पर चीनी आवंटन प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत चीनी मिलों को पहले सप्ताह में कम से कम 40% आवंटन और शेष मात्रा अगले सप्ताह में बेचनी होगी। केंद्रीय भंडारण निगम CWC ने महाराष्ट्र के नासिक से तमिलनाडु के चेन्नई तक इस सीजन की दूसरी प्याज एक्सप्रेस रवाना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में CWC ने कहा कि इस पहल से आपूर्ति श्रृंखला और मजबूत होगी और सभी बाजारों में प्याज की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने CNG की कीमत में 3.89 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी की है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं। कीमत बढ़ने के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में CNG अब 86.98 रुपए प्रति किलोग्राम मिलेगी। गुरुग्राम में CNG की कीमत 92.01 रुपए और गाजियाबाद तथा नोएडा में 95.59 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 137वीं कड़ी होगी। सरकार ने व्हाट्सएप की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों से संबंधित एक फर्जी दावे का खंडन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि सरकार ने ऐसे कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के

0: उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।
1: राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 को 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी अभियान के रूप में मनाया जा रहा है। इस अभियान के 3 प्रमुख स्तंभ हैं ट्रिब्यूट, प्ले एंड मूव। इस वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस 1 घंटा खेल के मैदान में के आह्वान के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस अभियान के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और अर्जुन राम मेघवाल ने क्रिकेट खेला। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम 1 घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
2: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए 1 घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा, देश आगे बढ़ रहा, नया भारत का निर्माण हो रहा।
1: श्री मेघवाल ने कहा कि खेल लोगों को स्वस्थ और फिट रखने के साथ साथ तनाव से दूर रखने में भी मदद करता है। सरकार द्वारा खेल पारिस्थितिकी तंत्र में लगातार निवेश किया जा रहा है, जिसके परिणाम वैश्विक मंच पर भी दिखाई दे रहे हैं। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भारत का प्रदर्शन, ओलंपिक, पैरालंपिक और बहु खेल प्रतियोगिताओं में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। खेलो इंडिया, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन जैसी पहलें देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत कर रही है और खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में मदद कर रही है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को उनके समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में अगले 5 दिनों तक बारिश और गरज के साथ तूफान जारी रहने की संभावना है। उधर बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी अगले 2 से 3 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि दिल्ली में आज आसमान में बादल छाए रहेंगे जबकि बारिश नहीं होगी। विभाग ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में अगले 7 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना। कहा, इस यात्रा से मध्य एशिया के साथ रणनीतिक साझेदारी मजबूत होगी और सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। नेपाल में विनाशकारी बाढ़ में मरने वालों की संख्या 626 हुई। 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। भारत ने मानवीय सहायता बढ़ाई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा, ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार लेकिन अत्यधिक सतर्क भी है। आज राष्ट्रीय खेल दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की और खिलाड़ियों के समर्पण को सराहा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: লক্ষ্মী ছাড়া।
1: এমন কাণ্ড কারখানা করতে বোধহয় কিশোর কুমারই পারেন, বুঝলেন?
2: একদম।
1: এবং এই গল্প 1981 সালে অনুসন্ধান সকলেই জানেন, এবং শক্তি ফিল্মসের ব্যানারে এই ছবি, শক্তিপদ রাজগুরুর গল্প, রাখি গুলজার, আমজাদ খান, উৎপল দত্ত, অভি ভট্টাচার্য এবং অবশ্যই অমিতাভ বচ্চন, বিগ বি, এবং আমজাদ কালীরাম, এবং সেই কালীরামের ঢোল ফেটে, মানে কালীরাম কী করে বিপর্যস্ত হলেন পুলিশ ইন্সপেক্টরের হাতে, সে নিয়েই গল্প, এবং এটা ভীষণ ভীষণ মজার একটা দৃশ্যায়ন।
2: একদম। আমাদের একটু সংবাদ বিরতিতে যাওয়ার আছে, তবে তার আগে একটা জরুরি কাজ।
3: আকাশবাণী কলকাতা, একটি ঘোষণা। শিশুমহল ও গল্পদাদুর আসরে শিল্পী হিসেবে অংশগ্রহণ করার জন্য একটি প্যানেল গঠন করা হবে। ইচ্ছুক প্রার্থীদের অভিভাবকদের কাছ থেকে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে, যার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে ফর্ম দেওয়া হবে। প্রার্থীর বয়সসীমা 31 অগস্ট 2026 তারিখে 6 বছর পূর্ণ ও 12 বছরের মধ্যে হতে হবে। এই আবেদন করতে পারবেন ইচ্ছুক প্রার্থীর অভিভাবকেরাই। স্ক্রিনিং হবে আবৃত্তি, কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতে। আবৃত্তিতে একক এবং গ্রুপ দুয়ের জন্যই আবেদন করা যাবে। ফর্মে উল্লেখ করতে হবে প্রার্থী কোন কোন বিষয়ে স্ক্রিনিংয়ে অংশ নিতে চায়। এক বা একাধিক বিষয় হলেও একটি ফর্ম দেওয়া হবে, যাতে সেই বিষয়গুলোর উল্লেখ থাকবে। গ্রুপের রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে। গ্রুপের যিনি লিডার তার নামে আবেদনপত্র হবে, ঠিকানাও গ্রুপেরই হতে হবে, এবং আবেদনপত্রে গ্রুপের প্রত্যেক সদস্যের নাম, বয়স ও রেজিস্ট্রেশন নাম্বারের উল্লেখ থাকবে। ফর্মে প্রার্থীর বয়সের উল্লেখ।
4: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে বিশাল শর্মা। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। और बात करते हैं ताशकंद में मौजूद अपने संवाददाता से, सुशील चंद तिवारी वहां पर मौजूद हैं इस समय। जी सुशील, प्रधानमंत्री के ताशकंद पहुंचने पर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं स्वागत को लेकर, और खासतौर पर लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप वहां पर?
5: विशाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ताशकंद में जबरदस्त तैयारियां हो रही हैं। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जगह जगह पर भारतीय झंडे लहरा रहे हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री रुकेंगे वहां भी चारों तरफ तिरंगा ही नजर आ रहा है। विशाल, देर शाम प्रधानमंत्री का भारतीय और उज्बेकिस्तान के लोगों की ओर से पारंपरिक अंदाज में स्वागत भी होगा। हम जानते हैं कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत दोस्ताना हैं, और यहाँ के लोग जो हैं वो भारतीय फिल्मों, गानों और फिल्मी सितारों के दीवाने हैं, तो उसकी एक झलक भी यहाँ के स्वागत में जरूर नजर आएगी। विशाल,
4: एक बात और जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान किन प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है?
5: विशाल, प्रधानमंत्री की जो ये मध्य एशियाई देश उज्बेकिस्तान की यात्रा है, ये उनकी चौथी यात्रा है, और इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव के बीच तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी, जिससे दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ सके। लेकिन जो प्रमुख मुद्दे हैं उनमें निवेश बढ़ाने, व्यापार को दोगुना करने, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी सहयोग और संवाद बढ़ाने को लेकर खास बातचीत होगी। विशाल, दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी भी एक बहुत बड़ी अड़चन है व्यापार को आगे बढ़ाने में, तो इस विषय पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। विशाल
4: धन्यवाद सुशील इस जानकारी के लिए। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है जबकि 2000 से अधिक लोग अब भी लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। वेनेजुएला के साथ हुए इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजश्कियान ने कहा है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है लेकिन अमेरिका को लेकर सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने आज प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ एक उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। विभाग ने बताया कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और सिक्किम में आज गरज के साथ बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की आशंका है। इस बीच मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज बादल छाए रहेंगे और बारिश नहीं होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has embarked for his 2-day visit to Uzbekistan today. The Prime Minister will visit Tashkent at the invitation of the President of Uzbekistan, Mr. Shavkat Mirziyoyev. During the visit, both the leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. In his departure statement, Mr. Modi expressed confidence that his visit to Uzbekistan and the Kyrgyz Republic will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. He said that in recent years, India-Uzbekistan strategic partnership has seen significant advancement. The Prime Minister said that he is looking forward to having discussions with the President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, on further deepening cooperation in trade and investment, digital connectivity, defence, energy and on advancing the shared visions of Viksit Bharat and Yangi Uzbekistan. Mr. Modi said that he will also visit the Shastri Memorial and the Mahatma Gandhi Centre at Tashkent State University of Oriental Studies, which is a tribute to the close cultural and people-to-people ties that bind the two countries. The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 626 this morning, with over 2,000 people remain missing. Police had recovered 233 bodies in Chitwan, 158 in Nawalparasi East, 48 in Gorkha, 47 in Nawalparasi West, 45 in Dhading, 41 in Nuwakot, 31 in Tanahun and 13 in Rasuwa. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said that the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. Rescued people are being taken from high-risk areas to safer locations.

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह उज्बेकिस्तान और किर्गिज गणराज्य की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारतीय मूल के करीब 100 अन्य लोगों से भी संपर्क नहीं हो रहा है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भारत सरकार की ओर से सहायता के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति पौडेल ने विनाशकारी बाढ़ में भारतीय नागरिकों की मौत पर शोक व्यक्त किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ अब तक के सबसे बड़े तेल समझौते की घोषणा की है। इस समझौते से अमेरिका को 65 अरब बैरल से अधिक कच्चे तेल के भंडार पर नियंत्रण प्राप्त हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ये समझौता अमेरिका करदाताओं पर बिना किसी बोझ के हासिल किया गया है और इससे अमेरिका के कुल तेल भंडार दोगुने से भी अधिक हो जाएंगे। अमेरिकी प्रशासन का दावा है कि तेल आपूर्ति में इस वृद्धि से घरेलू गैसोलीन की कीमतें कम होंगी और वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को आर्थिक सुधार में मदद मिलेगी। ये घोषणा वेनेजुएला के तेल निर्यात पर महीनों से चल रहे अमेरिकी राजनयिक दबाव प्रतिबंधों के प्रवर्तन के बाद हुई है। ये समझौता ट्रंप के आदेश पर किए गए अमेरिकी सैन्य अभियान के 9 महीने बाद हुआ है, जिसमें वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया गया था और उन पर मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप लगाकर उन्हें अमेरिका को सौंप दिया गया था। समाचार कक्ष से भूपेंद्र सिंह।
0: ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा है कि

ईरान अमेरिका के साथ बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका को लेकर सतर्क भी है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका समझौते की शर्तों का पालन करता है तो ईरान भी अपनी प्रतिबद्धताएं पूरी करेगा। श्री पेजेश्कियन ने कहा कि राजनयिक प्रयासों का केंद्र बिंदु जून में हुए शांति समझौते को फिर लागू करना हो सकता है। उन्होंने कहा कि समझौता लागू रहने के दौरान ईरान ने करीब 9 करोड़ बैरल तेल का निर्यात किया था। श्री पेजेश्कियन की ये टिप्पणी ऐसे समय आई है जब ईरान घरेलू स्तर पर आर्थिक दबावों का सामना कर रहा है। एक अलग संदेश में ईरान के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामेनेई ने महंगाई, बेरोजगारी और कीमतों तथा बाजार के प्रबंधन सहित आर्थिक और जनजीवन से जुड़ी चुनौतियों पर गंभीरता से ध्यान देने का आह्वान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज शिकागो में भारत की व्यापक विकास दर, सुधारों की गति और दीर्घकालिक निवेश के बढ़ते अवसरों पर चर्चा की। उन्होंने आज प्रमुख निवेशकों और व्यापारिक नेताओं के साथ उच्च स्तरीय व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। बैठक में भारत में विनिर्माण, भारत और विश्व के लिए विषय पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री ने भारत क्यों अभी क्यों रूपरेखा भी प्रस्तुत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। प्रधानमंत्री ने सभी खेल प्रेमियों को राष्ट्रीय खेल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका समर्पण, जुनून और दृढ़ संकल्प देश को गौरवान्वित करता है। श्री मांडविया ने कहा कि मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जी योयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादिर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और SCO के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास और कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। रक्षा मंत्री ने कहा कि नए भारत में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि देश अब केवल वैश्विक नियमों का अनुसरण नहीं कर रहा बल्कि नियम बनाने में भी योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास किया है।
1: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपेरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ही परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से जारी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। इस बीच नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने बाढ़ के बाद भारत सरकार की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नेपाल में संकट की स्थिति को देखते हुए भारत चिंतित है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नेपाल की सभी जरूरतों में भारत मदद उपलब्ध कराने के लिए

0: ये तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत पड़ोसी देश को लगातार सहायता भेज रहा है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषयों से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। लाखों राज्य सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगियों ने महंगाई भत्ता जारी करने, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और सेवा से संबंधित कई अन्य लंबित मांगों को लेकर महाहड़ताल की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल के गंगाई क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी के श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi is en route to Uzbekistan for a 2-day visit. The Prime Minister is visiting Tashkent at the invitation of President of Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev. Both leaders will have discussions on the entire gamut of issues of bilateral importance in Tashkent. In his departure statement, Mr. Modi expressed confidence that his visit to Uzbekistan and the Kyrgyz Republic will strengthen India's strategic partnerships in Central Asia and deepen the civilizational connect with the region. He said in recent years, India-Uzbekistan strategic partnership has seen significant advancement. Prime Minister Modi said he is looking forward to having discussions with President Mirziyoyev of Uzbekistan on further deepening cooperation in trade and investment, digital connectivity, defence, energy and on advancing the shared visions of Vikasit Bharat and Yangi Uzbekistan. Mr. Modi said he will also visit the Shastri Memorial and the Mahatma Gandhi Center at the Tashkent State University of Oriental Studies, which is a tribute to the close cultural and people-to-people ties that bind the two countries. The death toll from devastating flash floods in Nepal and Tibet has risen to 626, while over 2,000 people remain missing. Police have recovered 233 bodies in Chitwan, 158 in Nawalparasi East, 48 in Golkha, 47 in Nawalparasi West, 45 in Thading, 41 in Nuwakot, 31 in Tanahun and 13 in Rasuwa. Search and rescue operations are underway across the affected districts of the Himalayan nation. Officials said the police are coordinating with residents and other agencies to locate missing people and assist those stranded by the floods. Rescued people are being taken from high-risk areas to safer locations. Search and rescue officials are working to clear the roads blocked by flood debris and landslides to reopen access and facilitate relief operations. India has stepped up humanitarian assistance to Nepal. The Ministry of External Affairs yesterday said 320 Indian nationals remain uncontactable or are reportedly missing following the flash flood tragedy on Wednesday. Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said around 100 people of Indian origin holding other nationalities also remain uncontactable. Addressing the media in New Delhi, Mr. Jaiswal said 63 Indian nationals working at Trishuli 1 hydropower project were rescued from the affected area. Nepal President Ramchandra Podel today expressed gratitude to his Indian counterpart Draupadi Murmu for her concern and the support extended by the government of India following the devastating flash floods in Nepal that left hundreds dead and caused widespread destruction. The India Meteorological Department has issued an orange color warning for heavy to very heavy rainfall over Odisha till Monday. Heavy rainfall is also likely to

0: आकाशवाणी कोलकाता AIR FM गोल्ड 100.1 आपका खरा सोना। दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स में। मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपके साथ बात करेंगे परियोजना प्रस्तुति के विषय पर। आइए सुनते हैं परियोजना प्रस्तुति।
1: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति
0: दोस्तों आज परियोजना प्रस्तुति के अंतर्गत हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना देश के गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण योजना है। इसे आयुष्मान भारत योजना का प्रमुख भाग माना जाता है। इस योजना का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसी व्यक्ति को आवश्यक चिकित्सा उपचार से वंचित न रहना पड़े। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ 2018 में 23 सितंबर को किया गया था। इसके अंतर्गत पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने वाली अनेक गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए स्वास्थ्य बीमा आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में उपचार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ यह है कि गरीब परिवारों को महंगे इलाज के खर्च से राहत मिलती है। हृदय रोग, कैंसर, किडनी तथा अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार जैसी कई स्वास्थ्य सेवाएं इसके अंतर्गत आती है। इससे लोगों को समय पर इलाज करवाने में सहायता प्रदान होती है और बीमारी के कारण परिवार पर पड़ने वाले आर्थिक

0: बोझ भी कम होते हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केवल स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा और समानता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने का अवसर मिलता है। कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भारत को स्वस्थ और सशक्त राष्ट्र बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। यदि हम लोगों में ये जागरूकता बढ़ाएं और योजना का सही ढंग से लाभ पहुंचाना सिखाएं, तो ये देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकती है। दोस्तों, आज परियोजना प्रस्तुति में हमने बात की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की।
1: 100.1 FM गोल्ड प्रेजेंट्स परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति सरकारी उद्यम तरक्की समाज की। परियोजना प्रस्तुति। परियोजना प्रस्तुति।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
3: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स। चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। FM गोल्ड पर
0: कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स, मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती, आकाशवाणी कोलकाता, AIR FM गोल्ड 100.1 आपका खरा सोना में रहूंगी आपके साथ शाम के 6:30 तक, और आपके लिए रहेंगे यस्टरडेज़ के पसंदीदा तराने। किशोर कुमार की आवाज़ में कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कारवा फिल्म के इस गीत के संग, जिसके गीतकार हैं मजरू साहब और संगीतकार R.D. बर्मन।

0: हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्र अल्लाहु अकबर
0: हर हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुग्र अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह
0: हर हर हर हर
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह
1: हर हर
0: अल्लाह अल्लाह

दोस्तों, कार्यक्रम में अगला गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म अजनबी से, आनंद बख्शी की बोल संगीतकार आर डी बर्मन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चाइन क्लासिक्स अपनी दोस्त भारती के संग।

देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता AIR FM गोल्ड 100.1 आपका खरा सोना में कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स। और इस वक्त एक बेहद रोमांटिक ट्रैक एक और आपके लिए पेश है, पर इस बार लता मंगेशकर के संग है मोहम्मद रफ़ी। दोस्तों आप इस गीत को अभी सुनेंगे स्वयंवर फिल्म से, जिसके गीतकार हैं गुलजार, संगीतकार राजेश रोशन।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
2: 5:48 आप सुन रहे कार्यक्रम चाइन क्लासिक्स आकाशवाणी कोलकाता, AIR FM गोल्ड 100.1 आपका खरा सोना में। मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे कुर्बानी फिल्म के इस गीत की ओर, जिसके गीतकार हैं इंदीवर और संगीतकार बिदू।

दोस्तों, नाज़िया हसन की आवाज़ में आपने सुना ये गीत। और अगला गीत है आशा भोसले, संग है आर डी बर्मन और साथ है सहगायक सनम तेरी कसम फिल्म से गुलशन बावरा के बोल संगीतकार आर डी बर्मन। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स, जहां मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती। और दोस्तों, आपके साथ इस गीत को सुनते सुनते रुक करेंगे समाचारों की ओर और उसके बाद फिर से जुड़ेंगे आपके संग हम, और रहेगा आपके लिए कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स। फिर से आपको इस वक्त जो गीत सुनाएंगे वो है फिल्म जाना ओ मेरी जाना। ये गीत जो आप सुनेंगे वो है फिल्म सनम तेरी कसम से। हम जानते हैं कि ये इस दौर की कितनी हिट फिल्म रही और इस फिल्म के सभी गीत कितने ज़्यादा सुपरहिट रहे हैं। रीना रॉय और कमल हसन की जोड़ी को बहुत ज़्यादा सराहा गया इस फिल्म में और उतना ही ज़्यादा सराहा गया इस फिल्म के गीतों को। उसी फिल्म से एक गीत आप सभी के लिए पेश है कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स में। मैं हूँ आपके संग आपकी दोस्त भारती।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर रवाना हुए। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यतागत जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे उज़्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज़्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और SCO के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
1: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ही यह परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि 320 भारतीय नागरिकों से संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। नेपाल के अनुरोध पर चिकित्सा कर्मियों और सुरंग बचाव विशेषज्ञों सहित 11 सदस्य भारतीय दल भी स्थानीय अधिकारियों की सहायता

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूँ वैष्णवी। श्रोताओं, 29 अगस्त का दिन भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर खेलों के प्रति उनके योगदान को याद करने का अवसर है। मेजर ध्यानचंद ने उस दौर में भारतीय हॉकी को दुनिया के शीर्ष पर पहुंचाया जब भारत स्वतंत्र भी नहीं हुआ था। आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे कि मेजर ध्यानचंद की हॉकी यात्रा कैसी रही, किस तरह उन्होंने भारतीय हॉकी को दुनिया में पहचान दिलाई और उनकी विरासत आज भारत में खेलों को बढ़ावा देने की कोशिशों से किस तरह जुड़ती है। इसके साथ ही जानेंगे कि खेलों को केवल पदक जीतने तक सीमित न रखकर युवाओं, फिटनेस और देश के विकास से जोड़ने की दिशा में क्या प्रयास किए जा रहे हैं। श्रोताओं, भारतीय खेल इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें किसी एक उपलब्धि तक सीमित नहीं किया जा सकता। मेजर ध्यानचंद भी ऐसे ही खिलाड़ियों में शामिल है। हॉकी के मैदान पर उनके खेल ने भारत को एक अलग पहचान दी। गेंद पर उनकी पकड़, खेल को समझने की क्षमता और गोल करने की उनकी कला ने उन्हें दुनिया के महान हॉकी खिलाड़ियों में शामिल किया। आइए जानते हैं कि एक युवा खिलाड़ी से हॉकी के महान नायक बनने तक का उनका सफर कैसा रहा।
2: मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को तत्कालीन इलाहाबाद में हुआ था। उनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था। उन्होंने बहुत कम उम्र में पढ़ाई छोड़ दी और 16 वर्ष की उम्र के आसपास सेना में भर्ती हो गए। ध्यान सिंह के बचपन का एक बड़ा हिस्सा झांसी में बीता। हॉकी के प्रति उनका लगाव शुरू से ही दिखाई देने लगा था। दोस्तों और भाइयों के साथ खेलते हुए वे पेड़ की डाल से हॉकी की स्टिक बना लेते थे और घंटों खेलते रहते। सेना में आने के बाद उनकी इस प्रतिभा को आगे बढ़ाने का मौका मिला। दिन में सेना की जिम्मेदारियां पूरी करने के बाद ध्यान सिंह अक्सर चांदनी रात में अकेले मैदान पर अभ्यास करते। इसी आदत के कारण उनके गुरु सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने उन्हें ध्यानचंद का नाम दिया। 1920 के दशक में सेना की हॉकी टीम के साथ खेलते हुए उनका नाम तेजी से सामने आने लगा। अपने बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत 1926 में न्यूजीलैंड दौरे से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय करियर का आगाज किया। भारतीय टीम ने उस दौरे में 21 मैच खेले, इनमें 18 में जीत मिली, 2 मैच बराबरी पर रहे और केवल 1 में हार हुई। टीम ने कुल 192 गोल किए और सिर्फ 24 गोल खाए। ध्यानचंद ने इस दौरे में करीब 100 गोल किए। अब अगली बड़ी मंजिल थी ओलंपिक। 1928 में एम्स्टरडैम ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी को पहली बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक मिला। फाइनल में भारत ने नीदरलैंड्स को 3-0 से हराया। ध्यानचंद ने इस फाइनल में 2 गोल किए और पूरे टूर्नामेंट में 14 गोल के साथ सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी रहे। लेकिन इस जीत तक पहुंचना आसान नहीं था। उस समय भारतीय हॉकी टीम के पास विदेश जाकर खेलने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। खिलाड़ियों को ओलंपिक तक पहुंचने के लिए अलग अलग संगठनों से मदद लेनी पड़ी। टीम ने समुद्री रास्ते से एम्स्टरडैम जाते वक्त रास्ते में कई मैच खेले और इस तरह यात्रा के खर्च को पूरा करने की कोशिश की। एम्स्टरडैम की सफलता के बाद भारतीय हॉकी टीम की पहचान पूरी दुनिया में मजबूत हुई। 1932 में लॉस एंजलिस ओलंपिक गेम्स में भारत ने एक बार फिर स्वर्ण पदक जीता। जापान के खिलाफ भारत ने 11-1 और अमेरिका के खिलाफ 24-1 से जीत हासिल की। अमेरिका के खिलाफ ये जीत आज भी ओलंपिक हॉकी में सबसे बड़ी जीतों में गिनी जाती है। लेकिन ध्यानचंद की सबसे बड़ी परीक्षा भी बाकी थी। 1936 में बर्लिन ओलंपिक गेम्स।

0: इस बार ध्यानचंद भारतीय टीम के कप्तान थे। ओलंपिक से पहले भारतीय टीम जर्मनी से एक अभ्यास मैच हार गई थी। टीम के लिए ये सबसे बड़ा झटका था। ध्यानचंद ने महसूस किया कि टीम को और मजबूत तैयारी की जरूरत है। फाइनल 15 अगस्त 1936 को हुआ और सामने थी कुछ दिन पहले ही मात देने वाली जर्मन टीम। इस मैच से जुड़ी कई कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। इसमें मेजर ध्यानचंद चोटिल होने, दूसरे हाफ में बिना जूतों के खेलने और गेंद पर उनके असाधारण नियंत्रण की बातें शामिल हैं। लेकिन इन कहानियों से अलग जो बात सबसे महत्वपूर्ण है वे है उनके खेल के प्रति रवैया। मैच के दौरान जर्मन गोलकीपर की टक्कर से मेजर ध्यानचंद का एक दांत टूट गया। चोट के बावजूद वे मैदान पर लौटे। इसके बाद भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया और जर्मनी को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इस मुकाबले में ध्यानचंद ने 3 गोल किए। उनकी खेल भावना और नेतृत्व ने इस जीत को और खास बना दिया।
1: श्रोताओं, मेजर ध्यानचंद के दौर में आज जैसी खेल सुविधाएं, आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था या बड़े स्तर की सरकारी सहायता नहीं थी, फिर भी एक खिलाड़ी की प्रतिभा, लगातार अभ्यास और टीम भावना ने भारतीय हॉकी को दुनिया की सबसे मजबूत टीमों में शामिल कर दिया। आज करीब एक सदी बाद परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब सवाल ये है कि क्या हम खेलों में ऐसी व्यवस्था तैयार कर सकते हैं जिसमें किसी एक असाधारण खिलाड़ी के उभरने का इंतजार ना करना पड़े, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से हजारों बच्चों और युवाओं को खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिले। यहीं से राष्ट्रीय खेल दिवस की दूसरी तस्वीर सामने आती है।
0: इस वर्ष के राष्ट्रीय खेल दिवस अभियान का विषय है ट्रिब्यूट प्ले एंड मूव, यानी श्रद्धांजलि खेल और सक्रियता। इसमें एक ओर मेजर ध्यानचंद जैसे खिलाड़ियों को श्रद्धांजलि देने की बात है तो दूसरी ओर लोगों को खेल और शारीरिक गतिविधियों से जोड़ने का संदेश। भारत में खेलों को व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्षों में खेलो इंडिया जैसे कार्यक्रम पर जोर दिया गया। इसका उद्देश्य देश के अलग अलग हिस्सों में खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अवसर तथा सहायता देना है। 27 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया संवाद के जरिए देश भर के युवाओं और खिलाड़ियों से बातचीत की। इस कार्यक्रम से देश भर के 5000 से अधिक संस्थान के युवा जुड़े। प्रधानमंत्री ने कहा कि खेलों को केवल पदक जीतने तक सीमित नहीं किया जा सकता। उनके अनुसार खेलों की ताकत और युवाओं की ऊर्जा को देश के विकास के साथ जोड़ना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जो खेलेगा वो खिलेगा।
2: जब मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ तो ये केवल मेडल जीतने तक सीमित नहीं है, ये विकसित भारत के निर्माण में भारत की खेल शक्ति और भारत की युवा शक्ति को एक साथ जोड़ने का अभियान है। मैं हमेशा कहता आया हूँ जो खेले वो खिले, और खेल में खिलना सिर्फ मैदान पर जीतना नहीं है, खेल में खिलना मतलब व्यक्तित्व का खिलना और देश का गौरव बढ़ाना।
0: साथ ही उन्होंने कहा कि भारत को खेलों में अपनी भागीदारी का दायरा बढ़ाना होगा। जिन खेलों में देश अभी मजबूत नहीं है उनमें भी खिलाड़ियों को तैयार करने और बेहतर प्रदर्शन पर ध्यान देना होगा। ये सोच वर्ष 2036 के ओलंपिक को लेकर भारत की तैयारियों से भी जुड़ी है। लक्ष्य केवल ओलंपिक में पहुंचना नहीं बल्कि अलग अलग खेलों में बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ियों को तैयार करना है जो वहां अच्छा प्रदर्शन कर सकें। इस दिशा में खेलों की व्यवस्था के साथ खेल प्रशासन को बेहतर बनाने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। खेलों में बदलाव केवल व्यवस्था के स्तर पर नहीं बल्कि सोच के स्तर पर भी दिखाई देता है। इसका एक उदाहरण है पैरा स्पोर्ट्स। 2024 पैरालंपिक्स की कांस्य पदक विजेता शीतल देवी ने खेलो इंडिया संवाद में बताया कि पैरा खिलाड़ियों को लेकर लोगों की सोच बदली है। जो सवाल कभी ये था कि ये खिलाड़ी क्या कर सकते हैं, आज वही खिलाड़ी देश के लिए पदक जीतने की उम्मीद का हिस्सा बन चुके हैं। खेल किसी बच्चे के लिए केवल प्रतियोगिता नहीं है, इससे अनुशासन, टीम के साथ काम करने की आदत और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। वहीं नियमित शारीरिक गतिविधियां स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी हैं। इसलिए खेलों को केवल खिलाड़ियों तक सीमित रखने की बजाय आम लोगों तक पहुंचाने पर भी जोर दिया जा रहा है। फिट इंडिया आंदोलन इसी सोच का हिस्सा है। इसका उद्देश्य लोगों को रोजमर्रा के जीवन में अधिक सक्रिय रहने और फिटनेस को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करना है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: श्रोताओं, खेलों को आगे बढ़ाने के लिए केवल मैदान पर खिलाड़ी की मेहनत जरूरी नहीं है, उसके पीछे प्रशिक्षण, उपकरण, व्यवस्था, सही मार्गदर्शन और खेल के प्रति समाज की सोच भी उतनी ही जरूरी है। और यही वो जगह है जहां मेजर ध्यानचंद की विरासत आज के भारत से जुड़ती है। ध्यानचंद ने एक ऐसे समय में भारत का नाम दुनिया में रोशन किया जब संसाधन सीमित थे। उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत से एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया। आज भारत की कोशिश उस विरासत को एक बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने की है, ताकि खेल किसी एक खिलाड़ी की असाधारण कहानी न रह जाए बल्कि देश के

ज्यादा से ज्यादा बच्चों और युवाओं के जीवन का हिस्सा बने। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।

0: आकाशवाणी कोलकाता AIR FM गोल्ड 100.1 आपका खरा सोना। दोस्तों, मैं हूं आपके संग आपकी दोस्त भारती और समय हुआ है इस वक्त 6:20 और 8 सेकंड। अभी एक विशेष सूचना आप सभी के लिए, 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत की तरफ से ये सूचना दी गई है। मुख्य पोस्टमास्टर जनरल पश्चिम बंगाल सर्कल की अध्यक्षता में दिनांक 22 सितंबर 2026 को पूर्वाह्न 11 बजे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल योगायोग भवन P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 में गूगल मीट वीडियो सम्मेलन के माध्यम से 137वीं डाक एवं पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इस अदालत में पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की डाक सेवाओं एवं डाकघरों से पेंशन लेने वाले पेंशन भोगियों के पेंशन दावे से संबंधित शिकायतों का निपटान किया जाएगा। शिकायत पत्र में संदर्भ संख्या, विभिन्न डाक प्राधिकारियों से पूर्व में प्राप्त पत्रों की तारीख एवं शिकायतकर्ता के मोबाइल नंबर सहित पूर्ण ब्यौरों का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। शिकायत श्री SC दास, सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि, मुख्य पोस्टमास्टर जनरल का कार्यालय पश्चिम बंगाल सर्कल P36 CR एवेन्यू कोलकाता 700012 के नाम से भेजी जाए और यह डाक या ईमेल ID cpmg_wb@indiapost.gov.in या adpgcowb@gmail.com या pg.wb@indiapost.gov.in के माध्यम से दिनांक 31 अगस्त 2026 तक या उसके पूर्व पहुंच जानी चाहिए। शिकायतकर्ता से अनुरोध है कि वे निर्धारित तारीख एवं समय पर गूगल मीट के वीडियो सम्मेलन के जरिए डाक एवं पेंशन अदालत में उपस्थित हो। किसी भी प्रकार के स्पष्टीकरण के लिए सहायक निदेशक डाक सेवा, ग्राहक संतुष्टि से दूरभाष संख्या 0332210250, 0332210612 या 0332210500 पर संपर्क किया जा सकता है। डाक पेंशन अदालत के आवेदनों ईमेल पर डाक अदालत या पेंशन अदालत शब्द लिखा होना चाहिए। डाक एवं पेंशन अदालत में उत्तराधिकार आदि से संबंधित विधिक मामलों एवं नीतिगत मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सूचना यहीं समाप्त हुई।
1: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
0: दोस्तों, कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स में आज का ये आखिरी गीत आप सभी को सुनाऊंगी और ठीक ये वादे के साथ आपको छोड़ जाऊंगी कि ठीक शाम 7:02 पर आपके लिए मिलूंगी FM रेनबो पर कार्यक्रम जाने अनजाने के संग। जाते जाते आप सभी के लिए ये गीत आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, मैं हूँ प्यार तेरा है गीत के बोल, और इस गीत को आप सुनेंगे फिल्म तीसरी मंजिल से, गीतकार मजरू साहब, संगीतकार RD बर्मन। ठीक 6:30 पर आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा। कार्यक्रम चाय एंड क्लासिक्स में आज के कार्यक्रम का ये आखिरी

0: Good evening and welcome to the Saturday edition of Market Mantra. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on market-related queries. But do remember that we do not address stock or company-specific queries. The numbers to call us on are 2331-4444, 2331-0481, and 2371-7106. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar. मार्केट मंत्र में आपका अभिनंदन श्रोताओं व्यापार अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी प्रश्न पूछने के लिए आप डायल कीजिए 2331-4444 2331-0481 और 2371-7106 दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी जरूर डायल करें श्रोताओं चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार से जुड़े विषयों पर गहरी समझ रखने वाले पत्रकार शिशिर सिन्हा शिशिर जी कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन
2: जी नमस्कार थैंक यू नमस्कार
1: चर्चा शुरू करेंगे श्रोताओं मगर उससे पहले आइए जानें सुर्खियां
0: Benchmark domestic indices fall for the third consecutive week. Sensex and Nifty drops over 0.3%. US stock market indices register weekly gains and global crude oil prices decline this week.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 0.3% फिसले अमरीकी शेयर बाजारों में इस सप्ताह बढ़त हुई और इस सप्ताह वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल के दाम घटे
0: Here's a disclaimer. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: आइए श्रोताओं बिना विलंब किए जानते हैं कि सप्ताह के दौरान हमारे दोनों ही यानी कि प्रमुख शेयर सूचकांक यानी कि बाजार ने कैसा प्रदर्शन किया देश के प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई भू राजनीतिक अनिश्चितताओं का बाजार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा सप्ताह के दौरान बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी लगभग 0.3% उड़ के सेंसेक्स फिसलकर 77,265 पर आया वहीं निफ्टी लुढ़ककर 24,176 पर बंद हुआ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के व्यापक बाजार में मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 सूचकांकों में सप्ताह के दौरान 0.5% से अधिक की वृद्धि हुई क्षेत्रीय स्तर की बात करें तो निफ्टी मेटल आईटी फार्मा और हेल्थ केयर सूचकांकों में 2% से अधिक की तेजी आई वहीं दूसरी ओर निफ्टी एफएमसीजी में लगभग 1.5% और निफ्टी ऑयल एंड गैस ऑटो तथा डिफेंस सूचकांकों में लगभग 1%

0: की गिरावट दर्ज की गई। विदेशी मुद्रा बाजार में भारतीय रुपया इस सप्ताह 32 पैसे मजबूत होकर एक अमरीकी डॉलर के मुकाबले 95.39 रुपए पर बंद हुआ।
1: So, we would like to know, Shishir, from you. We have had for three consecutive weeks, due to persistent geopolitical uncertainty, the

0: And the uncertainty remains. So should we continue to have volatility in the market, or you think there could be some silver lining somewhere?
1: So we should not just think about the uncertainty, geopolitical uncertainty. We should also focus on what was told during the Jackson Hole meeting. If you go by what the Federal Chief Reserve said during that meeting, he said that we have to think about bringing the inflation to 2% level, and whatsoever we have to do, we will do it. That means, what is the indication? The indication is that there will could be an interest rate hike in the month of September. So if it happens, that's not a good news for the market. So geopolitical combined by any action by the Federal Reserve, that will have some action, that will have some impact on the market. So geopolitical, we all know, I mean we do not getting any sense that when this is going to end. If you get one voice from US, then another voice from Iran, then another voice from some other country. So there is a continuous thing. So I do not know what will happen, but I believe that now the Jackson Hole commentary by the Fed chief is really, really important. And if it going to, if he's going to hike the interest rate in the month of September, then that will not be a very good
0: thing. But that's another factor that will come into consideration, Shishir. Geopolitical situation is one, and the Jackson Hole is the other one. You cannot say that that's geopolitical is something that we cannot.
1: I'm saying that it is important. What I'm saying that apart from the geopolitical, now the another concern for the market is, is the, if any rate hike by Federal Reserve in the month of September, that means there could be more FPI outflow, because when you, the interest rate is high, people are going for the profitable venture. So I'm not discounting the geopolitical factor, but I'm also adding one more factor which is bringing some kind of nervousness among the market participants.
0: And also on the sectoral front, Nifty, Metal, IT, Pharma, Healthcare did pretty well. So which are the sectors that you would recommend that we should keep our eye on?
1: After this NVIDIA latest result and their commentary on the result, now we are seeing a good recovery in the IT sector. I mean, if you can remember last month we were talking about that how IT sector is going to be affected. Now because NVIDIA is saying that infrastructure investment will be continue to be more, and that is good news for the IT sector. So my first priority would be IT sector, because it's slightly on the valuation side. The second will be, of course, the PSU banks. I think the PSU banks are very undervalued. There should be more and more opportunity there. And the third one, all-time hit, फार्मास्यूटिकल सेक्टर.
2: आपसे और भी बातें करेंगे और भी सवाल पूछेंगे हम, मगर उससे पहले आइए पहला सवाल लेते हैं कोलकाता से. अनिमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं. अनिमेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: गुड इवनिंग मार्केट मंत्र.
2: गुड इवनिंग,
3: दिस इज अनिमेश भट्टाचार्य फ्रॉम कोलकाता.
2: बहुत स्वागत है आपका.
3: सर, आई हैव वन क्वेश्चन.
0: प्लीज गो अहेड.
3: वुड इट बी सेफ टू इन्वेस्ट ए ह्यूज अमाउंट in the market of smartphone? Thank you, sir.
2: Smartphones को लेकर के वो पूछ रहे हैं कि क्या ये वाजिब होगा अभी यहाँ पर निवेश करना?
1: स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां जो हैं, जो गिनती की कंपनियां हैं, जो कि शेयर बाजार में हैं, और अभी एक चर्चा ये चल रही है कि जो 25,000 रुपए से कम के स्मार्टफोन है, उस पर जीएसटी की दर 18% से घटा करके 5% कर दिया जाए. तो इस समय में जो मोबाइल हैंडसेट का मार्केट है, उसमें थोड़ी हमने गिरावट देखी है. करीबन मतलब बीते कुछ समय में बहुत तेजी थी, लेकिन अभी कुछ समय से गिरावट आ रही है, क्योंकि कीमतें बढ़ी हैं. और कीमत बढ़ने की एक बड़ी वजह यह है कि मोबाइल हैंडसेट में लगने वाले जो एक खास कलपुर्जा होता है, वो उसकी कमी दुनिया के बाजारों में देखने को मिल रही है. तो अब 12 सितंबर को जब जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है, और अगर मोबाइल हैंडसेट में दरें कम की जाती हैं जीएसटी की, तो वो उन कंपनियों के लिए बेहतर होगा. तो मुझे लगता है कि दो सप्ताह इंतजार कर लें, उसके बाद अगर उसमें आप जाते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा.
2: ये तो रही मोबाइल की बात, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ईवी पर, तो ईवी पर आपकी क्या राय रहेगी?
1: देखिए, ईवी को लेकर के थोड़ा सा बुलिश मैं इसलिए हूँ क्योंकि कई तरह के प्रोत्साहन की बात चल रही है, कई तरह की योजनाओं की बात चल रही है. यहाँ तक कि अगर मैं दिल्ली सरकार की बात करूँ, उन्होंने भी प्रोत्साहन योजनाएं की बात की है. तो ईवी सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं, या जो भी हमारी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, उनके लिए स्थिति बेहतर तो नजर आ रही है.

0: लेकिन एक चीज अभी ध्यान में रखना है कि जो हमने कहा कि चिप की बात है और कीमतों को लेकर के बढ़ाने का सिलसिला चल रहा है, और अभी भी हमारे यहाँ ईवी में एक कंसर्न आता है इंफ्रास्ट्रक्चर
1: की बात,
0: तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो थोड़ा सा उसको पीछे खींचते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर और खासतौर पर जो ईवी बनाने वाली कंपनियां हैं उनके लिए स्थिति बेहतर है।
1: और ईवी का विजन खाली यही तो नहीं है ना कि हम अभी वो बुलिश हो रहा है या वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम एक ग्लोबल लेवल पर भी देखते हैं अगर,
0: बिल्कुल,
1: तो ईवी बहुत किफायती भी है हाउस होल्ड के लिए।
0: नहीं, कीमत के लिहाज से अगर आप सोचेंगे तो ईवी आपको एक सामान्य जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है उससे थोड़ा महंगा होता है
1: शुरुआत में।
0: हाँ, लेकिन आप ये भी देखिए कि उसकी जो उसके लिए एक बड़ी चुनौती होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप गाड़ी तो ले आते हैं, चार्जिंग कहाँ कराएंगे? और खासतौर पर अगर मैं टियर 2 टियर 3 सिटीज की बात करूँ, वहां पर एक समस्या है अभी भी। तो एक कॉशस है, लेकिन चूंकि ये ईवी बनाने वाली जो कई कंपनियां हैं वो फॉसिल फ्यूल भी बनाती हैं, और जहां पर हम अच्छी खासी बिक्री देख रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि वो स्थिति अच्छी है। वो
1: दिल्ली से हमारे साथ वत्स राज जुड़ रहे हैं। महोदय, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
2: नमस्कार। मार्केट मंत्रा। नमस्कार सुशील सिन्हा जी। सर, मेरा सवाल है कि क्या एक कंपनी का कोई शेयर होल्डर जो है वो सिक्योर क्रेडिटर होता है या अनसिक्योर क्रेडिटर होता है? और अगर वो सिक्योर क्रेडिटर होता है तो जब कंपनी डीलिस्ट होती है तो क्या उसको उसके पैसे कुछ वापस मिलते हैं जो उसकी शेयर होल्डिंग होती है उस समय की मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग? प्लीज, थैंक यू।
0: देखिए, कंपनी में दो तरह के शेयर होल्डर होते हैं, एक जिनको हम लोग ऑर्डिनरी शेयर होल्डर कहते हैं, जिनको हम लोग प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर कहते हैं। तो जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं उनकी स्थिति कह सकते हैं कि जब कंपनी अगर मान लीजिए कि बंद हो गई, कंपनी का सारा कुछ बिकने की स्थिति में आ गया, तो पहला वहां पर हक क्रेडिटर का बनता है। तो जो आपका मूल सवाल था कि क्या वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है या सिक्योर्ड क्रेडिटर है, एक ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो है वो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के कैटेगरी में आएगा। पहली बात, उसको हम क्रेडिटर नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसने कर्ज नहीं दिया है, उसने शेयर खरीदे हैं, तो वो क्रेडिटर की कैटेगरी में नहीं आता है। वो उसको पैसा तभी मिलता है जब कंपनी पहले कर्जदारों ने जिससे पैसे लिए उसको चुका दिया, सरकार का जो बकाया है उसको चुका दिया, कर्मचारियों का बकाया है उसको चुका दिया, उसके बाद अगर पैसा बचा तो जो फेस वैल्यू है उस शेयर का, जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है उसके मान लीजिए 1, 2, 5, 10 जो भी फेस वैल्यू, उतने ही पैसे उसको मिलेंगे। अब दूसरा जो प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर है वो एक तरीके से उसका इंटरेस्ट पे भी हक बनता है, और जब कभी भी कंपनी बंद हो जाए या कंपनी डिसॉल्व हो जाए तो उसका हक जो है वो इन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के मुकाबले में आगे रहता है, उनको सबसे पहले भुगतान किया जाता है।
1: दिल्ली से हमारे साथ अमित झा जुड़ रहे हैं। अमित जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: जी, मैं दिल्ली से अमित झा बात कर रहा हूँ। सर
0: जी, अमित जी बोलिए।
3: हाँ सिन्हा सर से मेरा प्रश्न ये है सर कि हमने, बड़ी अच्छी बात है कि हम विकसित भारत की परिकल्पना कर रहे हैं 2047 तक हम विकसित अर्थव्यवस्था बन जाए सर, परंतु सर पिछले 4-5 साल का अगर हम डेटा उठा के देखें तो सर हमारी जीडीपी की रफ्तार वही है, उतनी ही रफ्तार से हम बढ़ रहे हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन जो है औद्योगिक उत्पादन का आंकड़ा भी कोई खास उत्साहजनक है नहीं सर। तीसरी चीज सर, ग्रोस सॉरी ये करेंट अकाउंट डेफिसिट जो चालू खाता घाटा है, अगर हम निर्यात बढ़ता है हमारा निर्यात हमें खुशी मिलती है तो साथ में आयात भी बढ़ जाता है तो ट्रेड बैलेंस वहीं पे रह जाता है जस के तस है। तो सर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस गति से अगर हम वृद्धि कर रहे हैं जीडीपी और आईआईपी में तो क्या चमत्कारी कोई होने वाला है कि 2047 में हम एकदम से विश्व में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ जाए? हमारी कोई जादू की छड़ी है इस हिसाब से रफ्तार से? तो मुझे लग नहीं रहा कि सर हम,
0: अमित जी आपकी आशंकाएं गलत नहीं है कि इस तरह के विकास की रफ्तार से क्या हम 2047 में 30 अरब डॉलर, माफ कीजिएगा, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी हम बन सकते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरीके से विकास हमारी रही है कि देखिए 6% के ऊपर या 6.5% के ऊपर, फिर से अगर आप 6.5% की दर से विकास करते हैं तो वो एक संतोषजनक स्थिति है। ये ध्यान जरूर रखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं वो बहुत ही प्रतिकूल हैं, और उनके बावजूद भी अगर हम 7% या उससे ऊपर की दर से विकास करते हैं तो हमारे लिए एक बेहतर स्थिति है। अब रहा सवाल कि क्या इसी रफ्तार से हम 2047 में 30 ट्रिलियन डॉलर, 30 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन पाएंगे? मेरा जवाब होगा नहीं। यहाँ पर आपको विकास की रफ्तार ऊंची चाहिए, आपको 8% या 8% के ऊपर चाहिए, 9% का चाहिए, लेकिन वो केवल

0: आपके हाथ में नहीं है। अगर कोई कहे कि केवल और केवल सरकार ही सब कुछ करेगा, जो वैश्विक परिस्थितियां हैं वो अगर आपके हिसाब से नहीं है, कच्चे तेल के भाव काफ़ी ऊपर चल रहे हैं, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपकी आशंकाओं से सहमति रखता हूँ। मैं
1: Joining us from Bengaluru is NR Prasad. A warm welcome.
2: Hi, good evening, Market Tantra. This is NR Prasad from Bangalore. Hello, Rajesh ji. Hello, Prachi ji.
1: Hello, hello. How are you?
2: Mr. Sinha, just one question. What is exactly this CAS starting from the SEBI closing action session and from 3:15 to 3:30 p.m. And in that first 5 minutes is called IEP. Really, I don't know how it works. My broker is starting this new session from Monday onwards. Can you just detail on this, what exactly how it works? Thank you. This is my question.
0: Mr. Prasad, I may not be able to give you much detail about the CAS, but I can tell you that CAS is basically all talking about the price discovery during the last 15 minutes of the session, trading session, which is between 3:15 and 3:30. And that is based on the future and that's basically on the derivative trading. So that is one thing. There are a lot of, differences are there. There are a lot of issues are there because this is a new system. So of course, there will be some teething problem and what we have seen during last 15 days. But when we were talking to SEBI chairperson, he made it very clear that we are not going to make much change into that. But of course, all the views and all the suggestions are most welcome. So if I just summarize it into just one sentence, it is a new mechanism for the price discovery. There are some issues because the brokers are not very much aware about this new system. So there are some problems like what happened on Friday also. But trust me that within 15 days or within a month or so, we believe that this system will stabilize and there will be a proper price discovery which is going to benefit the market.
3: दिल्ली से योगेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन है, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: जी नमस्कार आपको। देखो मेरा सवाल ये है कि जैसे कहा जाता है कि मार्केट में, एशिया मार्केट में खासतौर पर, कि जो लार्ज कैप है उनका ग्रोथ रेट स्मॉल कैप और मिड कैप थोड़ा कम रहता है, और आने वाले 10 साल या 15 साल या 12 साल पीरियड में स्मॉल कैप और मिड कैप लार्ज कैप को बीट कर देते हैं। तो एक डिटेल इन्वेस्टर के लिए क्यों जरूरी है कि वो लार्ज कैप में एलोकेशन ले, यानी कि क्यों ना वो अपना 50% ज्यादा एलोकेशन मिड और स्मॉल कैप ले, अगर उसने निश्चित कर ही लिया है कि उसको 15 से 20 साल का इन्वेस्टेड रहना है।
0: योगेश जी, यहाँ पर मुद्दा यह है कि आप खरगोश की रफ्तार से रखना चाहते हैं या कछुए की रफ्तार से चलना चाहते हैं। बाजार में बहुत तेज उतार चढ़ाव अगर आए वो आपके लिए अच्छी बात नहीं है। स्मॉल कैप और मीडियम कैप के साथ, मिड कैप के साथ एक बड़ी समस्या क्या आती है कि उसमें बहुत ज़्यादा हम तेजी से उतार चढ़ाव देखते हैं, और इसीलिए आपको लगता है कि उसमें जो फायदा हो रहा है या उसकी जो कीमतों में अंतर है वो लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा बेहतर है। ध्यान रखिए कि लार्ज कैप के रास्ते में बैरिक जो कहते हैं ना कि स्पीड ब्रेकर्स उस तरीके के नहीं होते हैं जैसे आपको स्पीड ब्रेकर्स मिड कैप और स्मॉल कैप में देखने को मिलता है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप गलत नहीं है, अगर गलत होते तो बाजार में उसकी अनुमति ही नहीं होती। बाजार में वो है यानी कि वो सही है, लेकिन एक निवेशक के लिहाज से और एक कहते ना कि आप एक लंबे समय के लिए आप बने रहना चाहते हैं, तो वहां पर आपके लिए ये एक बेहतर होता है कि आप लार्ज कैप में ज्यादा एक्सपोजर लेते हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप में कम रखते हैं।
1: जितेंद्र फ्रॉम दिल्ली जॉइंस अस नाउ। अ वार्म वेलकम जितेंद्र।
5: जितेंद्र जयपुर से, नॉट दिल्ली, ठीक है। हेलो
0: जी, जयपुर से ही है आप जितेंद्र जी, बताएं।
5: अच्छा हाँ अच्छा सर, ये पिछले बार आपने बहुत अच्छा बताया कि टुकड़े टुकड़े में प्रॉफिट भी बुक करिए और इंस्टॉलमेंट पे परचेज भी करिए, बहुत अच्छा लगा। और आपने हिंट भी दे दिया था लार्ज कैप फंड का, ठीक है। तो आप हमसे सर बस ये दो चीज बताइए कि सर जैसे भी कौन सा सेक्टर मतलब थोड़ा सा भी सस्ता है हम लॉन्ग टर्म के लिए ले। ऐसे तो मैंने आईटी में शुरू कर दिया है, आईटी में, इसके अलावा।
0: तो आपका ये पहला प्रश्न है, आपने कहा दो प्रश्न पूछने हैं।
5: नहीं,
0: अच्छा एक ही प्रश्न है। अच्छा जितेंद्र जी, देखिए आपने बहुत अच्छा किया है कि आईटी में आपने शुरू किया है, क्योंकि मेरी अपने व्यक्तिगत तौर पे जो है वो राय रही है कि आईटी सेक्टर एक बेहतर दिशा में बढ़ रहा है, संभावनाएं काफ़ी अच्छी बन रही हैं, तो उसमें आप किस्तों में आप निवेश करते हैं तो वो एक अच्छा विकल्प है। दूसरा, जैसा पब्लिक सेक्टर बैंक्स मुझे लगता है कि इस समय में आकर्षक हैं, और तीसरा फार्मा भी है, और इसके साथ

0: साथ अगर डिफेंस में भी आप थोड़ा कर सकते हैं, क्योंकि डिफेंस को लेकर के बहुत सारी योजनाएं आई हैं। और अभी आपको बताएं, कुछ दिन पहले DRDO की तकनीक जो है वो प्राइवेट सेक्टर को देने की बात कही गई थी, यानी कि वहां पर भी डिफेंस सेक्टर्स की कंपनियों के लिए एक अच्छे दिन है। तो आप ये चार सेक्टर्स को ध्यान में रख करके आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको मैं एक छोटा सा सुझाव जरूर दूंगा, पैसा आपका अपना है, थोड़ा सा पैसे पे मेहनत जरूर करिएगा, अपने स्तर पर भी थोड़ा शोध करिएगा। हमने आपको शुरुआती सुझाव दिए हैं, अंतिम स्वरूप आपको खुद देना है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको अतिरिक्त मेहनत करनी है।
1: शिशिर जी, लेकिन गौरतलब बात यह भी है कि अभी जब जितेंद्र जी हमसे सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि कौन सा क्षेत्र सस्ता है, यानी उनके शायद कहने का अर्थ ये हो कि सस्ते इवैल्यूएशन के जो शेयर होते हैं वो कहाँ है। तो ये कितना सही है कि हम किसी को कोई अगर शेयर 17 रुपए का हमें मिल रहा है तो हम इस इंटाइंसमेंट में चले जाएं कि इस लालच में चले जाएं कि यार ये तो 17 रुपए का है, चलो खरीद लो इसे।
0: नहीं नहीं,
1: क्या ये सही है?
0: नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। मुझे लगता है कि आप उसकी जिसको कहते हैं ना उस कंपनी और उस क्षेत्र की संभावनाओं को ध्यान में रख करके उस कंपनी की कीमत को आप आंके,
1: क्योंकि हो सकता है कि 17 रुपए आपने जो लगाए हैं वो भी आपके डूब जाए।
0: बिल्कुल। और आपको एक चीज बताऊं कि हमारे जो शेयर बाजार है उसमें 68 जो है वो सरकारी कंपनियों के शेयर है। सरकारी कंपनियों के शेयर अपने बराबर के जो दूसरे उसी क्षेत्र में काम करने वाले निजी कंपनियों के जो शेयर है उससे काफी सस्ते में मिल जाते हैं। तो क्या सरकारी कंपनियों के शेयरों में स्थिति अच्छी नहीं है? वो स्थिति अच्छी है, क्योंकि वहां पर संभावनाएं अगर अच्छी बन रही है तो मुझे लगता है कि कीमत उसी हिसाब से आंकिए। केवल और केवल आप ये मत देखिए कि वो 4 रुपए का है, 5 रुपए का, 6 रुपए का है, तो उसके हिसाब से तो आप चेन्नई शेयर में चले जाइए, जिसको लोग पेनी स्टॉक्स कहते हैं।
2: मूविंग ऑन, मेजर US स्टॉक इंडेक्सेस एंडेड लोअर यस्टरडे एज इन्वेस्टर्स टर्न कॉशियस आफ्टर द फेडरल रिजर्व चेयर केविन वॉश रिइटरेटेड द सेंट्रल बैंक्स फोकस ऑन फाइटिंग इन्फ्लेशन इंक्रीजिंग प्रॉस्पेक्ट्स फॉर अ रेट हाइक। The Nasdaq Composite Index slipped over 0.5%. The S&P 500 dipped more than 0.2%, while the Dow Jones Industrial Average ended almost flat with a negative bias. However, for the week, the Nasdaq rose 0.8%, the Dow climbed over 0.5%, and S&P 500 gained 0.5%. Meanwhile, in his debut speech at the Central Bank's annual symposium in Jackson Hole, Fed Chair Kevin Warsh said that the Fed's predominant focus should be on prices, noting that inflation remains above its target. He added, better than expected inflation readings over the summer had not convinced him that underlying price pressures had meaningfully improved. The Fed Chair said the central bank needs to be confident that the underlying price pressures are moving towards its 2% target at a sufficient pace, or further policy action may be required. We will discuss if time permits on this. In the meantime, we are joined in by Shankar from Bhopal. A warm welcome, Shankar.
3: Good evening, sir.
2: Good evening.
3: So my question is about interest rate, which you have said it is likely to go up. Is the interest low interest rate era will be over, because RBI thought it will be good to have a lower interest rate, ministry thought, government thought lower interest rate will boost the business thoda bahut to boost hua hoga, but jyada tar to real estate prices have gone up like anything, because necessity commodities have been under control more or less, but the real estate prices have gone up by leaps and bounds. So is this the reason they are controlling going to increase interest rate, number one? Number two, sir, ये NCLT के क्या लॉज अभी इतने टाइट नहीं है कि पीपल आर एबल टू गेट अवे विथ अगेन विथ इजीली विदाउट हैविंग एक्चुअली पेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी? आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसेंट केस विच इज इन द लाइमलाइट, सर थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे तो अच्छा होगा।
0: Going by your first question about the lower interest rate, see, I mean, the primary responsibility of Reserve Bank of India is to control the inflation. And if the inflation is high, that there are various tools, and one of the important tools is the interest rate. And not just in India, but if you talk about any country, and I believe you are taking cue from what Federal Reserve Chief has said. So he has talked about indicated that interest rate could go up because of the inflation. And in India, we are seeing that now the inflation is, of course, below 5%. It is around 4.5%. But because of the monsoons and because of the some other regions, we are likely to see some hike or some rise in the interest rate. If it happens, then of course there will be some issue on that. Going to your second question, of course I don't have any comment to offer about that particular case, but I can say you that NCLT has a

0: set rules and regulation, and it decides on that only.
1: Global crude oil prices logged weekly losses amid hopes of a possible agreement to facilitate shipping through the Strait of Hormuz. Meanwhile, the traders also assessed comments from the US Fed chair on inflation. During the week at the Intercontinental Exchange, Brent crude October futures fell by 5.4% to settle at $89.31 per barrel. West Texas Intermediate crude October futures dropped 4.2% to end at $83.40 per barrel.
2: Mumbai se hamare saath Ratnakar jud rahe hain. Ratnakar ji, karyakram mein aapka abhinandan. Kripya apna sawal poochiye.
3: Hello. सवाल है कि आने वाले समय में एफएमसीजी, डिफेंस और फार्मा सेक्टर, कौन से सेक्टर में निवेश करना उचित रहेगा? थैंक यू.
0: हम रत्नाकर जी के सवाल के जवाब के पहले एक छोटी सी बात जोड़ना चाहेंगे जो एनसीएलटी की बात की थी. एनसीएलटी से कोई भी अगर नाराज है या उनको लगता है कि शायद उनके प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ है तो एनसीलैट में जा सकते हैं, जो एपिलेट है. वहां से भी अगर उनको संतोषजनक उनकी जो निर्णय है वो नहीं है तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का रास्ता होता है, जो इस मामले में हम देख रहे हैं. आप अब आपका जो प्रश्न है रत्नाकर जी, आपने एफएमसीजी की बात करी, आपने डिफेंस की बात की,
2: फार्मा
0: और फार्मा की बात की. दो जो बात के हैं, डिफेंस और फार्मा, मैंने अभी दो श्रोताओं के प्रश्न के जवाब में खास तौर पर उसका जिक्र किया था कि आप फार्मा में और डिफेंस में जा सकते हैं. इसके अलावा आईटी सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर बैंक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में स्थिति थोड़ी अच्छी मुझे लग रही है. तो ये चार क्षेत्र हैं जहां पर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं.
1: Prime Minister Narendra Modi has arrived in Tashkent, Uzbekistan today on a two-day visit. The business between both the countries has increased manifold in recent years, and the visit of PM Modi is expected to further increase the business opportunity. We have a report from a correspondent.
4: India is among top 10 partners of Uzbekistan with bilateral trade of around 1 billion. Both countries want to double this figure in the next 3 years. Talking to Akashvani News, Alisher Shaikhov, advisor to the chairman of the Chamber of Commerce and Industry of Uzbekistan, said that both countries have the potential to double their business in the coming years.
5: With India, of course, the first is the pharmaceutical, healthcare, tourism, and medical tourism especially, and also IT, AI, and digital transformation. Because all the countries now are just moving to the digital transformation, and that's the where is we easily can find a lot of the potential to realize and just to get a huge profit just providing services not only to Uzbekistan, Central Asia, CIS countries, but also to Europe, and also it can be Japan, South Korea, this where is the aging society is giving potential for us just to be present there.
4: Speaking to Akashvani News, Smita Pant, the ambassador of India in Uzbekistan, said that both countries will also discuss off-connectivity issues.
6: Despite connectivity bottlenecks, India or Uzbekistan natural markets hain. Hum zyada niryat kar sakte hain. Hum equipment, machinery, textile machinery, chemical, dyes, surgical equipments, isko hum export kar sakte hain. Hum unse zyada import bhi kar sakte hain. Because ye resource rich nation hai. Stumbling block jo hai, wo hai connectivity. To isko leke dono leaders baat karenge, dekhenge ki kya kiya ja sakta hai.
4: For Market Mantra, this is Sushil Chandra Tiwari from Tashkent, Uzbekistan.
2: केंद्रीय वित्त और कंपनी मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है. उन्होंने अमरीका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही. ये किस तरीके से हम इसके प्रोस्पेक्ट्स देख पा रहे हैं?
0: अभी आपने एक प्रश्न आया था कि हम जो परिस्थितियां देख रहे हैं उसमें विकास की स्थिति क्या रहेगी. आप देखिए, एक मंत्री निर्मला सीतारमण जी और पीयूष गोयल जी दोनों ही बाहर से ज्यादा निवेश लाने में जुटे हुए हैं. ये उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है.
2: शिशिर जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जितने भी श्रोता जुड़े हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए, मेरे और राजेश के सवालों के जवाब देने के लिए.
0: जी धन्यवाद, नमस्कार.
1: Benchmark domestic indices fall for the third consecutive week. Sensex and Nifty drops over 0.3%. US stock market indices register weekly gains and global crude oil prices decline.

0: this week. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye.
1: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं। आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की 4 दिन की यात्रा पर ताशकंद पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शफकत मिर्जियायेव ने उनका स्वागत किया। श्री मोदी ने रवाना होने से पहले कहा कि उनकी इस यात्रा से मध्य एशिया में भारत की रणनीतिक साझेदारियां मजबूत होंगी तथा इस क्षेत्र के साथ सभ्यता का जुड़ाव और गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे श्री मिर्जियायेव के साथ व्यापार और निवेश, डिजिटल संपर्क, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग और मजबूत करने के साथ साथ विकसित भारत और यांगी उज्बेकिस्तान के साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। श्री मोदी किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापरोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वे सुरक्षा, संपर्क और अवसर पर आधारित क्षेत्र के लिए भारत के विजन को आगे बढ़ाने और SCO के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से मुक्त क्षेत्र के लिए काम करने को लेकर उत्सुक हैं। नेपाल में आए भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। मंत्रालय ने कहा कि शवों की पहचान के लिए DNA नमूनों के विश्लेषण में सहायता हेतु भारत से 6 फॉरेंसिक विशेषज्ञ दल आज काठमांडू पहुंचने वाला है। सुरंग बचाव के लिए एक विशेष तकनीकी दल कल काठमांडू पहुंचा। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत के तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया है। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
1: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उससे केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी या जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक से सुधार है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेल स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों

तक बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: سر فیروزی. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की यात्रा पर आज उज़्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्ज़ियोयेव ने उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की उज़्बेकिस्तान की ये चौथी यात्रा है। उनके स्वागत में पूरे ताशकंद शहर को भारतीय झंडों और स्वागत संदेशों से सजाया गया है। दोनों नेता कल राष्ट्रपति भवन में द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने के क्षेत्रों में सहयोग पर भी विचार विमर्श होगा। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 626 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बुधवार को नेपाल में आई बाढ़ के बाद अभी तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया गया है। मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि अन्य देशों के राष्ट्रीयता रखने वाले भारतीय मूल के तकरीबन 128 लोग भी लापता हैं। श्री जायसवाल ने बताया कि रासुआ में जल विद्युत परियोजना से आज 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। इसके अलावा आज चीन से 120 भारतीय नागरिक नेपाल आ गए। मंत्रालय ने कहा कि भारत से 6 फॉरेंसिक विशेषज्ञों के आज काठमांडू पहुंचने की संभावना है। ये विशेषज्ञ मृतकों की पहचान के लिए डीएनए नमूनों की जांच में मदद करेंगे। सुरंग बचाव अभियान में मदद करने के लिए कल एक विशेषज्ञ तकनीकी दल काठमांडू पहुंच गया। इसके अलावा संबंधित उपकरणों से सुसज्जित सुरंग बचाव अभियान दल के आज काठमांडू पहुंचने की संभावना है। नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। 26 अगस्त से भारत ने प्रभावित क्षेत्रों में 57 टन से अधिक राहत सामग्री भेजी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
1: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उसमें केवल नेपाल ही चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी और जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के उधार से है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री मंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। मौसम विभाग ने ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उत्तर पूर्वी राज्यों के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज़ रेड बाय नीना।

0: আকাশে আপনাদের কথাই ভালো করে শুনতে পান না অন্যরা।
1: দেখুন, আমাদের অনেকে এসে বলেছেন যে অহংকার পতনের মূল, অর্থাৎ অহংকার থাকা উচিত নয়। আবার ঠিক তার উল্টো দিকে গিয়ে বিরোধী মতামত দিয়েছেন দৃপ্ত কণ্ঠে, যে কিছু কিছু কাজে অহংকার থাকা ভালো, এটাই তার পরিচয়, এটাই তার সিগনেচার। অর্থাৎ আমরা আজকে এই আলোচনাতে আপনারা যারা এলেন, তারা কেউ পক্ষে বললেন, কেউ বিপক্ষে বললেন, কিন্তু আমরা কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারলাম না যে কিছু কিছু কাজে অহংকার থাকা কি সত্যিই ভালো, নাকি অহংকার থাকাই উচিত নয়, বরং যারা আসছে তারা নানান সুবিধা পাবে অহংকারকে যদি ভুলে থাকা যায়, সবার সঙ্গে মেশা যায়। এই মুহূর্তে বিশ্বজিৎ আর দেবারুতি আপনাদের থেকে ছুটি নেবে, আবার ফিরে আসবে ঠিক 9:30, কারণ আজ রয়েছে বাংলার ক্যানভাস, আর এই বাংলার ক্যানভাস জুড়ে থাকবে বাংলার হারিয়ে যাওয়া খেলা। আজ জাতীয় স্পোর্টস ডে বা ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে, সেই কারণে আমরা আরও একবার ফিরে দেখব আমাদের ফিরে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া খেলা।
2: নমস্কার, আকাশবাণী সে সমাচার সন্ধ্যা কে সাথ মে সর ফিরোজি। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 2 दिन के दौरे पर ताशकंद पहुंचे। नेपाल में बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 669 हुई, 287 भारतीय नागरिकों सहित 2000 से अधिक लोग अब भी लापता। नेपाल ने भारत के राहत प्रयासों की सराहना की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अमेरिका के शिकागो बिजनेस राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के विशाल बाजार आकार और दीर्घकालिक निवेश क्षमता को रेखांकित किया। इस वर्ष जुलाई तक 115 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को प्रति बूंद अधिक फसल लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत लाया गया। यूक्रेन के बुचा जिले पर रूस के ड्रोन हमले में 37 लोग मारे गए और ओडिशा में सोमवार तक मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। बिहार, पश्चिम बंगाल के गांगे क्षेत्र, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
3: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
2: उज्बेकिस्तान में भारत की राजदूत स्मिता पंत ने आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष साक्षात्कार में कहा कि उज्बेकिस्तान में प्राकृतिक संसाधनों का समृद्ध भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ताशकंद यात्रा के दौरान निवेश और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी चर्चा की संभावना है।
4: रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत अपवर्ड ट्रैजेक्टरी में है। 2011 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोर्ज हुई थी, उसके बाद 2015 में प्रधानमंत्री जी का पहला दौरा हुआ था। 2026 तक बहुत सारे एरियाज में हम लोग फॉरवर्ड मूवमेंट कर चुके हैं, चाहे आप ट्रेड की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेवलपमेंट कोऑपरेशन की बात करें, डिफेंस कोऑपरेशन की बात करें। ट्रेड में ही करीबन 300% इंक्रीज हुई है 2015 से।
2: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता है। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में अब तक 88 भारतीय नागरिकों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय

0: नागरिक लापता है। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता है। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: नेपाल में बुधवार को आई भीषण बाढ़ की त्रासदी के बाद से वहां फंसे भारतीय नागरिकों को खोजने और बचाने के लिए भारत ने अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। भारत की 6 फोरेंसिक विशेषज्ञ टीम मृत लोगों के शवों की पहचान करने के लिए डीएनए सैंपल की जांच में मदद करेंगी। इसके अलावा सुरंग में बचाव कार्य की जांच करने वाली एक विशेष तकनीकी टीम कल काठमांडू पहुंची, जिसने प्रभावित क्षेत्र में सुरंग से लोगों को बचाने के काम में सहायता शुरू कर दी है। वहीं विदेश मंत्रालय ने बचाव, राहत और लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने के लिए 24 घंटे चलने वाला कंट्रोल रूम बनाया है। काठमांडू और बीजिंग में स्थित भारतीय दूतावासों ने भी 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की है, ताकि बाढ़ से प्रभावित भारतीय नागरिकों की मदद की जा सके। इसके अलावा भारत ने नेपाल में चल रहे बचाव और राहत कार्यों में मदद के लिए 57 टन से अधिक आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नेपाल सरकार ने संकट की इस घड़ी में भारत की तत्काल मदद की सराहना की है। नेपाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को असाधारण रूप से उदार बताया है। राष्ट्रपति रामचंद्र पोडेल ने भी भारत की सहायता के लिए आभार व्यक्त किया। वित्त मंत्री स्वर्णिम वागले ने कहा कि बाढ़ के बाद भारत से राहत सामग्री भेजी गई है और भारत ने पुनर्निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने का संकेत दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत नेपाल को लगातार सहायता भेज रहा है।
2: नेपाल में जो क्राइसिस पैदा हुई है उसमें केवल नेपाली चिंतित नहीं है, भारत भी चिंतित है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी भी सहायता की आवश्यकता होगी या जो भी सहायता आवश्यक होगी वह सब भारत उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विशाल बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए expert@AIRnewsHindi को फॉलो करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल आकाशवाणी समाचार से जुड़ें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है।
4: योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। ये योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। जना के अंतर्गत केंद्र सरकार 5 हेक्टेयर तक लाभार्थी को लघु सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। छोटे और सीमांत किसानों को 55% और अन्य किसानों को 45% तक वित्तीय सहायता मिलती है। केंद्र सरकार ने पिछले 3 सालों में 8,123 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस योजना में जारी की है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत न केवल एक प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है बल्कि अपनी सभ्यतागत विरासत, संस्कृति और क्षमताओं में दृढ़ विश्वास रखने वाला राष्ट्र भी है। लखनऊ में एक कार्यक्रम में श्री सिंह ने कहा कि आज जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। उन्होंने कहा कि भारत में शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास हुआ है।
5: पिछले 12 वर्षों में शिक्षा की क्वालिटी, एसेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी बढ़ी है। भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पहले के कंपैरिजन में 2 गुना हो गया है। 34 ईयर्स में पहली बार हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलावों और अच्छी पॉलिसीज का ही यह परिणाम है कि आज देश के नौजवान स्टार्टअप खड़े कर रहे हैं, यूनिकॉर्न कंपनियां बना रहे हैं। 2015 में हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 81वें स्थान पर, हमने अब 38वें स्थान पर अपनी पहुंच हासिल कर ली है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रामकृष्ण हेगड़े के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। उपराष्ट्र

0: राष्ट्रपति ने उन्हें एक ऐसा राजनेता बताया जो विकेंद्रीकरण, त्रिस्तरीय शासन, सुदृढ़ संघवाद और लोकायुक्त की मजबूती के लिए खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण हेगड़े का कार्यालय विश्वास का प्रतीक था। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस पार्टी पर दलित समुदाय को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। भाजपा के प्रवक्ता डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान ने नई दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का दलित समुदाय को अपमानित करने का इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत नरेंद्र मोदी सरकार ने बीआर अम्बेडकर की विरासत का सम्मान किया और उनसे जुड़े स्थलों को तीर्थ स्थल का दर्जा दिया है। पार्टी के एक अन्य प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए हिंदुओं को बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने अनुच्छेद 370 का उल्लेख किया और कहा कि इसके प्रावधान जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समुदाय के साथ भेदभाव करते थे। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दलित समुदाय के खिलाफ भेदभाव का मुद्दा उठाया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं।
1: आकाशवाणी समाचार से जुड़े रहिए, expert@AIRnews हिंदी को फॉलो करें और ताजा खबरों के लिए newsonair.gov.in पर जाएं।
0: ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव के पास बुचा जिले में आज हुए एक भीषण रूसी ड्रोन हमले में 37 लोगों की मौत हो गई। हमले में 50 आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई और कई घर और एक रेस्तरां भी भीषण आग की चपेट में आ गए। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बुजुर्गों और विकलांगों के लिए बने एक देखभाल केंद्र और आवासीय इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय हॉकी की श्रेष्ठतम प्रतिभा के रूप में मेजर ध्यानचंद आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। श्री मांडविया ने लोगों से स्वस्थ और फिट रहने के लिए हर सप्ताह कम से कम एक घंटा खेल के मैदान में बिताने का आह्वान किया।
2: आज नेशनल स्पोर्ट्स डे के अवसर पर सारे देश में फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक घंटे खेल के मैदान में कार्यक्रम दिया है। मुझे खुशी है, मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार खेल और खिलाड़ियों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
3: देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार निवेश कर रही है, जिसका असर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और अन्य बड़ी खेल प्रतियोगिताओं में भारत का बेहतर प्रदर्शन दिखाता है कि देश खेलों के क्षेत्र में लगातार मजबूत हो रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में खेल मंत्रालय के लिए 4400 करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया गया है। भारत ने रियो 2016 में 2 पदक, टोक्यो 2020 में 7 पदक और पेरिस 2024 में 6 पदक जीते थे। वहीं पैरा ओलंपिक खेलों में भी भारत के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पदकों की संख्या रियो 2016 में 4 से बढ़कर पेरिस 2024 में 29 हो गई है। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर हुआ है। देश ने 2014 के एशियाई खेलों में 57 पदक जीते थे, वहीं 2023 में भारत ने रिकॉर्ड 107 पदक जीतकर इतिहास रचा। सकलेन अख्तर के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने आज संयुक्त CSIR UGC नेट परीक्षा के सभी 5 विषयों की अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार अपने पहचान पत्रों का उपयोग करके लॉगिन कर अपने विषय से संबंधित अंतिम उत्तर कुंजी देख सकते हैं। पंजाब सरकार ने 27 अगस्त को महाहड़ताल के अंतर्गत सामूहिक आकस्मिक अवकाश पर जाने वाले लाखों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले सभी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले 2 दिनों के लिए मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर आज शाम राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शफकत मिर्जियोयेफ ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादर जापारोव के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नेपाल में अब तक 88 भारतीयों को बचाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि 287 भारतीय नागरिक लापता हैं। उन्होंने कहा कि 128 भारतीय मूल के लोग भी लापता हैं। रसुवा स्थित एक जल विद्युत परियोजना से 4 भारतीय नागरिकों को बचाया गया। आज 120 भारतीय नागरिक चीन से नेपाल में दाखिल हुए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच पर भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशलयुक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो CBN की मध्य प्रदेश इकाई ने ऑपरेशन वज्र 2 के अंतर्गत एक बड़े अंतर्राज्यीय औषधि तस्करी मामले में 66 लाख से अधिक मनोरोगी गोलियां जब्त की हैं। ये खेप मादक औषधि और मनोरोगी पदार्थ अधिनियम 1985 की संबंधित धाराओं के तहत जब्त की गई है। इस अभियान में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी और एक ट्रक भी जब्त हुआ है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि CBN ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश गलियारे के साथ मनोरोगी दवाओं की एक बड़ी अवैध खेप की आवाजाही के संबंध में विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। मौसम विभाग ने उड़ीसा में अगले दो दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में कल मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी कल तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और उड़ीसा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार जताए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिन की उज्बेकिस्तान की यात्रा पर कल राजधानी ताशकंद पहुंचे। राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव ने उनका स्वागत किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी के स्वागत के लिए ताशकंद शहर में विशेष प्रबंध किए।

0: गए हैं।
1: पूरा ताशकंद शहर भारतीय झंडों और होर्डिंग से सजा हुआ है। हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चौथी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव सदियों पुराने आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर विचार विमर्श करेंगे। दोनों नेता राष्ट्रपति भवन में व्यापार और निवेश, रक्षा, डिजिटल कनेक्टिविटी, ऊर्जा, शिक्षा और जन संबंधों के क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा करेंगे। वे विकसित भारत 2047 और उज्बेकिस्तान 2030 के साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने पर भी अपने विचार साझा करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, ताशकंद, उज्बेकिस्तान।
0: उज्बेकिस्तान के बाद श्री मोदी किर्गिस्तान की दो दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। प्रधानमंत्री किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सादोर जापारोफ के निमंत्रण पर बिश्केक में 26वें शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। नेपाल में आई भीषण बाढ़ में मृतकों की संख्या 669 हो गई है और 2000 से अधिक लोग लापता हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान जारी है। बचाए गए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बंद सड़कों को साफ करने का काम भी तेजी से चल रहा है। नेपाल के बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसे हुए लोगों की तलाश और बचाव में भारत की मदद जारी है। 11 सदस्यीय भारतीय तकनीकी दल ने कल हाइड्रो पावर सुरंग का मौके पर जायजा लिया। डॉक्टरों, पैरामेडिक्स और इंजीनियरों वाली यह टीम शुक्रवार को काठमांडू पहुंची थी। कल वे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के काम में मदद के लिए नोवाकोट जिले के त्रिशूली पहुंचे। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक चिली में और लांगटांग इलाकों का हवाई सर्वे करने के बाद भारतीय टीम ने सुरंग के आसपास बचाव से जुड़ा जरूरी काम शुरू कर दिया। नेपाल की सेना, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाल पुलिस के जवानों वाले 82 सदस्यों की एक संयुक्त रक्षा टीम कल से ही मलबा हटाने और सुरंग के अंदर फंसे माने जा रहे लोगों तक पहुंचने के काम में जुटी है। नेपाल की सेना के अनुसार नेपाली सुरक्षा बलों ने अब तक देश के विभिन्न पन बिजली परियोजनाओं की सुरंगों से 191 कर्मचारियों को बचाया है। हालांकि सुरंगों के अंदर और लोगों के फंसे होने की खबरों के बाद नेपाली अधिकारियों ने भारत से मदद मांगी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि वैश्विक कंपनियों को अपनी आपूर्ति श्रृंखला और पूंजी आवंटन का फिर से आकलन करना चाहिए, क्योंकि भारत न केवल विश्व बाजार उपलब्ध कराता है बल्कि दीर्घकालीन निवेश और संचालन मंच का भी आधार है। अमेरिका के शिकागो में प्रमुख निवेशकों और उद्योगपतियों के साथ एक उच्च स्तरीय सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत में निवेश का तात्पर्य व्यापक बाजार, सतत आर्थिक विकास, कौशल युक्त प्रतिभा, विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और एक दशक के सुधार से है। उन्होंने कहा कि देश का अगला आर्थिक विकास AI, इंजीनियरिंग, एनालिटिक्स, उत्पाद विकास, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स में निहित है। सरकार ने कहा है कि इस वर्ष जुलाई तक प्रति बूंद अधिक फसल योजना के अंतर्गत 115 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को लघु सिंचाई प्रणाली में लाया गया है। योजना का उद्देश्य खेत स्तर पर पानी के प्रयोग में दक्षता लाना और उसमें सुधार करना है। यह योजना जनवरी 2006 में केंद्र सरकार ने लघु सिंचाई के लिए शुरू की थी। वर्ष 2015-16 से 2021-22 तक इसका आधिकारिक नाम प्रति बूंद अधिक फसल किया गया और इसे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के प्रमुख घटक के रूप में लागू किया गया। मौसम विभाग ने ओडिशा में अगले दो दिनों के लिए वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके अलावा बिहार, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और विदर्भ में भी तेज बरसात की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के गंगा के तटवर्ती क्षेत्र और ओडिशा में बिजली चमकने तथा आंधी तूफान के आसार बताए हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Nina Arakel. Prime Minister Narendra Modi arrived in Tashkent, the capital of Uzbekistan, last evening on a two-day visit aimed at further strengthening bilateral ties between India and Uzbekistan. He was warmly received by Uzbek President Shavkat Mirziyoyev.